जमशेदपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के

0: सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. The President of Cyprus is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Constantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vaftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulis to India in his current capacity. The first international Big Cat Alliance Summit, which was scheduled to take place in New Delhi on 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. In a statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change said that following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it has been decided that the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. New dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Burhan, alias Arjuman Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college yesterday morning. The attackers fired multiple shots at close range. Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCTC, has announced the launch of the upgraded Golden Chariot luxury train for the 2026-27 tourist season, introducing enhanced onboard amenities and promotional offers for travellers. In a statement, IRCTC said that the Golden Chariot, known for showcasing the rich cultural heritage and scenic landscapes of South India, returns in a refreshed form, combining traditional elegance with modern comforts. The train features redesigned interiors, upgraded cabins with plush furnishings, smart TVs and Wi-Fi enabled entertainment systems. The luxury train can accommodate up to 80 guests across 40 cabins, including double bed,

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम के तहत श्रोताओं आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विषय पर।

0: किसान भाइयों जोहार। खेती की बातें में आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसानों की जिंदगी आसान नहीं होती। खेत में मेहनत पूरी लगती है, लेकिन मौसम कब साथ छोड़ दे इसका भरोसा नहीं। कभी बारिश जरूरत से ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, तो कभी ओलावृष्टि या तूफान पूरी फसल पर पानी फेर देते हैं। ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नुकसान की भरपाई कैसे होगी। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसी स्थिति में किसानों को मदद देती है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना सिर्फ नुकसान की भरपाई नहीं करती, बल्कि किसानों की आय को स्थिर रखने और जरूरत पड़ने पर लोन लेने को आसान बनाने में भी मदद करती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका फायदा कैसे मिलता है। इस योजना का दायरा काफी बड़ा रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे जुड़ सके। पात्रता को लेकर ज्यादा मुश्किल नियम नहीं है, लेकिन सिर्फ वही फसल इस योजना में शामिल होती है जिसे सरकार ने उस इलाके के लिए नोटिफाई किया है। जमीन के मालिक किसान इसमें शामिल हो सकते हैं। बटाईदार और किराए पर खेती करने वाले किसान भी पात्र हैं। जिन किसानों ने बैंक से फसल लोन लिया है उनके लिए बीमा जरूरी होता है। बिना लोन वाले किसान अपनी इच्छा से इसमें जुड़ सकते हैं। कुछ फसलें हैं जिसमें बीमा कवर दी जाती है, जैसे अनाज और दलहन, तिलहन, बागवानी फसलें और व्यावसायिक फसलें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर राज्य में कुछ तय फसलें ही कवर होती है, इसलिए आवेदन से पहले लिस्ट जरूर देख लें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि नुकसान होने पर पैसा कब और कैसे मिलता है। इस योजना में अलग अलग तरह के जोखिम कवर किए जाते हैं जिससे किसान को हर स्टेज पर सुरक्षा मिल सके। बुआई न हो पाना, जैसे कम बारिश या खराब मौसम, खड़ी फसल का नुकसान जैसे सूखा, बाढ़, कीट या तूफान, कटाई के बाद 14 दिनों तक का नुकसान जैसे बारिश या चक्रवात, स्थानीय आपदाएं जैसे जलभराव या भूस्खलन। इसके लिए प्रीमियम भी बहुत ज्यादा नहीं है। खरीफ फसल के लिए मात्र 2% और रबी फसल के लिए 1.5%। बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए आपको 5% तक प्रीमियम देना पड़ सकता है। बाकी का खर्च सरकार उठाती है जिससे किसानों पर बोझ कम रहता है। इस योजना को इस तरह बनाया गया है कि किसान आसानी से आवेदन कर सके और समय पर पैसा भी मिल जाए। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी या सीएससी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना जरूरी है। नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी या अधिकारी को जानकारी दें। अधिकारी मौके पर आकर नुकसान का आकलन करते हैं। रिपोर्ट सही पाई गई तो क्लेम पास हो जाता है। मुआवजे की राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। अगर किसान समय पर जानकारी देता है और सारी प्रोसेस सही तरीके से पूरी करता है तो इस योजना के जरिए नुकसान की भरपाई काफी हद तक आसान हो जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ उठाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको जागरूक होने की जरूरत है। थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए और फसल बीमा के लिए आवेदन जरूर कीजिए। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति, जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन महात्मा गांधी के अनुसार, कमजोर व्यक्ति कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं देशभक्ति गीत।

इस देशभक्ति वंदना के बाद अब आइए सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं। आज के गायक हैं जगजीत सिंह और साथी

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना में भक्ति रचनाएं जगजीत सिंह और साथियों से।
1: प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का सस्वर पाठ तथा श्री सूक्त की ऋचाओं से घृत होम करने का विधान वेद आदि शास्त्रों में वर्णित है। विशेष रूप से आधुनिक युग में वेदादि मर्यादा से हीन मनुष्य श्रीहीन, कांतिहीन और चिंतित तथा अशांत दिखाई देते हैं। उनके कल्याण के लिए श्री सूक्त पूर्वक होम विधान अत्यंत लाभकारी है। प्रातःकाल खिले कमल में गुणों का आश्रय लेने वाली लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है। प्रातः प्रबुद्ध कमलम आश्रयेत श्री गुणाश्रया। जो व्यक्ति सूर्योदय के समय स्नानादि से निवृत्त होकर श्री सूत का सस्वर पाठ सहित होम करता है, उसके पास संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य से युक्त लक्ष्मी स्वयं आ जाती है। यही श्रीदेवी मनुष्यों को चिंता और शोक भरे भवसागर से पार उतार देती है। तरति शोकम आत्मविद्। श्री सूक्त उपासना से मनुष्य सांसारिक वैभव तो प्राप्त करता ही है, उसको आध्यात्मिक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। वह आत्मविद् आत्मतत्व को सहज ही जान लेता है। जो व्यक्ति 21 बार श्री सूक्त के 16 मंत्रों से श्री होम करता है, वह सांसारिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अष्ट सिद्धि और नव निधियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र को सत्स्वर पढ़ने सुनने मात्र से ही व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार की शांति प्राप्त होती है। जो मंत्र पाठ नहीं कर सकते, वे मंत्र सुनकर स्वाहा कहते हुए हवन करें। मंगलवार से हवन पूर्वक श्री सूक्त का जप अत्यंत लाभकारी होता है। 72 दिनों में 125,000 विधि पूर्वक जाप करने से श्री सूक्त सिद्ध होता है। सिद्ध होकर ही मंत्र व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है। लक्ष्मी गायत्री गायत्री मंत्र के समान ही महामंत्र है। गायत्री परात्पर ब्रह्म के ध्यान से सिद्ध उससे सांसारिक विभूतियों के कारक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। किंतु लक्ष्मी तो प्रकृत सृष्टि का साक्षात स्वरूप है। यदि संसार के ऐश्वर्य धन धान्य के अभावों के कष्टों से संघर्ष करता व्यक्ति लक्ष्मी गायत्री का जाप करता है, तो वो अभावों के समुद्र को बिना प्रयास ही पार कर। लक्ष्मी गायत्री से व्यक्ति जीवन की सुविधाओं को भोग कर प्रभु की कृपा से सुखद शांति प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री सूक्त को होम पूर्वक पूर्ण करके लक्ष्मी गायत्री के जप की 11 मालाएं फेरने से मनुष्य के दुख दारिद्र्य और अभाव का विनाश और परम शांति।

मनोहर दास और साथियों से अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृतसरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनययुक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।

श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटन्स के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। 7:20 का हमारा समय होता है लोक गीतों का। 7:35 पर आप सुनते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह के 8 श्रोता सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और यहीं से प्रसारित किया जाता है 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। सुबह 9 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही गायिका को। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 10 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। 10:20 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11 और दोपहर 12 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाता है। 11:05 का हमारा समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 पर श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। दोपहर के 1 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होता है। 1:20 और 2:30 पर श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर श्रोताओं आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर आप सुन सकते हैं उपशास्त्रीय संगीत। 3:45 का हमारा समय होता है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का। संध्या 4 एवं 5 समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आप आनंद ले सकते हैं कव्वाली का और 4:23 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। संध्या 5:02 का समय होता है युवा साथियों का। श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। संध्या 6 हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाता है। 6:10 पर आप सुनते हैं झारखंड के लोकगीत और 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम की प्रस्तुति होती है। संध्या 7 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से रिले किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का और 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। रात्रि 8 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 9 न्यूज एट नाइट आकाशवाणी दिल्ली से ही प्रसारित किया जाएगा और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट। 9:30 का समय होगा करंट अफेयर्स का। रात्रि 10 हम आपसे जुड़ेंगे फिल्म संगीत के साथ। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त करे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं सुगम संगीत लेकर।
1: अरे हमारे बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत में गजलें। फनकार हैं गुलाम अली।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं गजलें। अगली गजल है फनकार जगजीत सिंह की आवाज़ में।

0: जगजीत सिंह की गायज गजल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप आनंद लेंगे रविशंकर चौधरी के गाए मैथिली गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रविशंकर चौधरी और साथियों से मैथिली गीत। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे रविंद्र संगीत कर्णिका बनर्जी से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे भेंटवार्ता लीवर से जुड़ी आम समस्या। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर मनोज कुमार, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार। इनसे हम जानेंगे लीवर से जुड़ी आम समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीवर का काम क्या होता है हमारे शरीर में।
1: मानव शरीर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंदरूनी अंग भगवान ने दिया है, एक है लीवर, दूसरा है किडनी। दोनों का काम है शरीर में व्याप्त गंदगी की सफाई कर और शरीर को शुद्धिकरण करना
0: जी।
1: जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग में लीवर आता है। हम लोग जो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, ये दो सोर्स है गंदगी का हमारे शरीर में अंदर जाने का
0: जी।
1: ये दोनों सोर्स से प्राप्त सारी गंदगियों को लीवर हमारा डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसके सारे टॉक्सिन्स को मार देता है, निष्क्रिय कर देता है। और वो निष्क्रिय किया हुआ अवशेष पदार्थ को स्टूल में निकाल देता है और इस तरह से प्योर और शुद्ध पदार्थ जो हम लोग भोजन और पानी में लेते हैं उसको अंदरूनी अंगों में डाल देता है।
0: तो लीवर में खराबी कब आने लगती है?
1: यदि विषाक्त भोजन खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो इन भोजन और पानी में आए हुए कीटाणु या गंदगी या टॉक्सिन्स लीवर में पहुंचते हैं और लीवर को बीमार करते हैं। ये लीवर बीमार तब होता है यदि टॉक्सिन्स की मात्रा लीवर को टॉलरेट करने की, डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता से ज्यादा हो जाए। अन्यथा यदि मात्रा कम है, विषाक्त भोजन में भी या विषाक्त पानी में भी यदि कीटाणु की मात्रा कम है तो लीवर अपने आप को उस कीटाणु को, उस टॉक्सिन्स को मार करके सुरक्षित रहता है।
0: किन अवस्थाओं में ऐसा होता है?
1: जहरीली शराब पीने से, विषाक्त भोजन खाने से,
0: अच्छा।
1: बासी खाना खाने से, नदी तालाब का पानी पीने से आदमी उल्टियां, दस्त, और बरसात के दिनों में, पार्टिकुलरली मानसून के दिनों में जब नदियां उफान पे रहती है तो सारी गंदगी को लेती है, उसको लोग पीने के रूप में सेवन करते हैं। तो ये विषाक्त कण, ये कीटाणु, ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाकर के उल्टी, कै, दस्त, डायरिया, इस तरह का रोग पैदा करता है।
0: किसी के लीवर में अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो ये कहाँ तक खतरनाक हो सकता है?
1: जैसा कि हमने बताया कि लीवर की एक क्षमता होती है, उस क्षमता के अंदर यदि हमारी गंदगी आई शरीर में तो उसको तो वो ठीक कर लेता है, लेकिन यदि उस क्षमता से ज्यादा आ गई तो वो कीटाणु उस लीवर को डैमेज करने लगता है।
0: अच्छा।
1: उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है शराब।
0: अच्छा।
1: शराब व्यक्ति क्षमता से ज्यादा पीता है तो लीवर डैमेज होता है, उसके सेल मरने लगते हैं और उसमें जॉन्डिस डेवलप कर जाता है, उसमें सिरोसिस हो जाता है, और ये डैमेज इरिवर्सिबल है, फिर दोबारे पुराने अवस्था में नहीं लौटता है।
0: एक बार अगर हो गया किसी को तो वो हमेशा रहता है?
1: हाँ, जो एक बार सिरोसिस हो गया तो वो व्यक्ति सिरोसिस से उसकी मृत्यु निश्चित है, वो दोबारे ठीक नहीं हो सकता, उसकी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है।
0: इन सब चीजों से हम बच कैसे सकते हैं, अपने लीवर को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
1: सुरक्षित रखने का बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय है कि हम जो भी खाएं ताजा खाएं, पेयजल जो है वो साफ सुथरा हो, सप्लाई वाटर हो या कुएं का पानी हो, जो भी हो, फिल्टर करके, बॉयल करके उसको पिए। खाना घर का बना हुआ हो, ठेले पर, पर्टिकुलरली रोड साइड बिकने वाले ठेले पर सामान जो है वो खुले में बिकता है, बरसात के दिनों में मक्खियां भिनभिनाते रहती है, वैसे पदार्थों का सेवन ना करें।
0: हाँ, तो श्रोताओं, आपने सुना कि हमें यदि अपने लीवर को सुरक्षित रखना है तो खान पान पर बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है। शुद्ध और साफ खाना खाएं तभी आपका लीवर सुरक्षित रख सकता है। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी, उम्मीद है आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, लीवर से जुड़ी आम समस्या। भेंट वार्ताकार थे राजेश, भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर मनोज कुमार और भेंट करता थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट लाइन शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
0: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द है 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
10: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
9: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
11: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that debt in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries. The first IBCA summit too will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
9: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior Railway Board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
12: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
9: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
13: The three-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the CIT must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
9: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIINewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
14: Burhan Hamza, alias Arjumand Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college Thursday morning. The attackers fired multiple shots at close range and he sustained three bullets to the head. Hamza Burhan, born in 1999, hailed from Pulwama in Jammu and Kashmir. He went to Pakistan on valid documents where he joined the Al-Badr terror group. According to the Union Home Ministry, he was an active terrorist and commander of Al-Badr. Since going to Pakistan, he had been motivating youth to join Al-Badr and funding the outfit's terror activities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
9: Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
15: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
9: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, temperature is breaking all records as the entire state is reeling under heat wave. On the fifth consecutive day, Banda district in the state recorded the highest temperature in the country of 47.6 degrees Celsius. More from our correspondent.
16: Torture of temperature continues in a state where mercury is touching new heights every passing day. Bundelkhand is worst hit area where temperature has gone beyond 45 degrees Celsius in most parts of the region. 47.6 degrees in Banda was not just highest in the country but also 4 degrees above normal, which paralyzed life in the city. Prayagraj was not far behind with temperature reaching 46.6 degrees, 5 degrees above normal. Varanasi recorded 45.6 degrees Celsius. State capital Lucknow also experienced the hottest day of this season with mercury rising to 43.6 degrees, 5 notches above normal. People are having sleepless nights also because of mercury reaching 30 degrees in night. Met department has warned about severe heat wave in some parts of the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
9: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. With this, CSK were officially eliminated from the season of IPL after finishing the league stage with just 12 points. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, CSK were bundled out for just 140 runs in 13.4 overs. Shivam Dubey was the top scorer with 47 runs. For Gujarat Titans, Mohammad Siraj, Rashid Khan and Kagiso Rabada each took 3 wickets. Siraj was adjudged player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit.
17: Thank you, Pramod. Explore alternative energy sources, PM tells government amid West Asia crisis, headlines the Indian Express, while the Hindustan Times headlines reforms, delivery, West Asia in focus as PM meets ministers, and the Statesman headlines PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers. Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautapa, planes simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
9: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st, postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 13.

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मतदाता सत्यापन का रोडमैप पर होगी चर्चा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। सभी एसपी को लंबित मामलों का 60 से 90 दिनों में निष्पादन करने के लिए दिए कड़े निर्देश। राज्य के 10 जिलों के 35 बालू घाटों को मिली पर्यावरण स्वीकृति। बालू की किल्लत होगी दूर, निर्माण कार्यों को मिलेगी गति। रांची में आज से राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स महाकुंभ। देश भर के 700 एथलीट लेंगे हिस्सा। कॉमनवेल्थ गेम के लिए होगा भारतीय टीम का चयन। और मौसम विभाग ने पलामू प्रमंडल समेत कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी दी, जबकि रांची, धनबाद, बोकारो और संताल परगना में तेज आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर आज रांची में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची में सुधार और घर घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल रांची में विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य के पांचों डिवीजनल कमिश्नर मोर्चा संभालेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन और सूची में सुधार के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1: एसआईआर का प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। इसमें पब्लिक का बहुत महत्वपूर्ण दो डेट का बारे में बताएंगे। वो इनमेशन देने वाला समय है 30 जून से 29 जुलाई तक है। इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका इनमेशन फॉर्म दिया जाएगी। वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा, मतलब उसका साथ में करेंगे। उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन और तकनीकी आधारित पुलिसिंग को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कप्तानों को नए आपराधिक कानूनों और तकनीक आधारित पुलिसिंग का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीजीपी ने सीसीटीएनएस प्रगति और ई साक्ष्य पोर्टल की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को 60 से 90 दिनों में निपटाने पर दिया जोर। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका शामिल करने के लिए बनी मंत्रियों की समिति की आज दूसरी बैठक हो सकती है। समिति सदस्य और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पहली बैठक में विभाग से कुछ जानकारियां मांगी गई थी। आज की बैठक में विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे।

0: भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गांधी चर्चा में हम सुनते हैं, बातें करते हैं महात्मा गांधी के विचारों पर। जहां तक समय के सदुपयोग की बात करें तो महात्मा गांधी के लिए समय का सदुपयोग केवल घड़ी देखना ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला थी। उनका मानना था कि समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे रचनात्मक कार्य, आत्म सुधार और सेवा में लगाया जाना चाहिए। वे एक एक पल का हिसाब रखते थे और अपना हर काम समय पर स्वयं करने में विश्वास करते थे। वे भागदौड़ के बीच भी प्रतिदिन मौन धारण करने और सामूहिक प्रार्थना के लिए समय निकालते थे, जिससे मानसिक शांति और ऊर्जा मिलती थी। वो मानते थे कि समय का सदुपयोग का अर्थ है काम को खुद करना, जैसे चरखा काटना, आटा पीसना, सफाई करना या कोई भी काम करना। गांधी जी अपने दैनिक कार्य को लेकर बेहद सचेत रहते थे। यहाँ तक कि वे यात्रा के समय भी ट्रेन में पत्र लिखते थे या अन्य कार्य जो वहाँ करने लायक हो उसे निपटा लेते थे। वे संसाधनों का अपव्यय नहीं करते थे और पानी, बिजली जैसी वस्तुओं के दुरुपयोग को समय की बर्बादी मानते थे। गांधी जी का समय के प्रति ये दृष्टिकोण आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जो हमें आत्मनिर्भरता और उत्पादकता का संदेश देता है। महात्मा गांधी के विचारों में समय का सदुपयोग, आइए इस विषय पर सुनते हैं अनुभा जायसवाल की वार्ता।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी। गांधी जी के जीवन पर उनकी माता का अधिक प्रभाव रहा। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्यार से सब इन्हें बापू तथा महात्मा भी कहते हैं। 13 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी का विवाह हो गया तथा उस समय उनकी पत्नी कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। प्यार से सब उन्हें बा पुकारते थे। नवंबर 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर के सामलदस कॉलेज में दाखिला लिया और यहां से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। इसके बाद गांधी जी भारत में आकर अपनी वकालत का अभ्यास करने लगे, लेकिन इसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। उसी समय दक्षिण अफ्रीका से उन्हें एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में काम मिला। वहां लगभग गांधी जी 20 साल तक रहे। अहिंसा और सत्याग्रह के संघर्ष से उन्होंने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। उनका ये काम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। गांधी जी ने आजीवन समय के महत्व को समझा और लोगों को भी सीख दी कि समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक बार की बात है, उन दिनों गांधी जी साबरमती आश्रम में रह रहे थे। एक दिन पास के गांव के कुछ कार्यकर्ता गांधी जी से मिलने आए। उन्होंने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया था जिसमें वे गांधी जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। गांधी जी ने अपना दूसरे दिन का कार्यक्रम देखा और उन कार्यकर्ताओं से पूछा, आप लोगों ने कार्यक्रम कितने बजे निश्चित किया है? 4 बजे का समय नियत किया गया है, कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। गांधी जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। जाने से पहले एक कार्यकर्ता ने पूछा, बापू मैं आपको लेने गाड़ी के साथ एक व्यक्ति को भेज दूंगा ताकि आपको सभा स्थल तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। गांधी जी ने उन्हें निश्चित समय पर तैयार रहने का आश्वासन दिया। इसके बाद कार्यकर्ता गांव वापस चले गए। अगले दिन गांधी जी समय पर सभा में जाने के लिए तैयार थे। वे गाड़ी की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन 4:15 बजे तक कोई भी कार्यकर्ता गाड़ी के साथ उन्हें लेने नहीं पहुंचा। सभा का समय हो रहा था। ऐसे में गांधी जी चिंतित हो उठे कि उनके समय पर नहीं पहुंचने के कारण सभी का समय बर्बाद होगा, लोगों का समय व्यर्थ न हो, इसका उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने उस पर अमल भी किया। कुछ देर बाद गाड़ी लेकर कार्यकर्ता जब साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां गांधी जी उपस्थित नहीं थे। उन्हें वहां नहीं पाकर कार्यकर्ता आश्चर्य में पड़ गया और गांव लौट आया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांधी जी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और अपना भाषण दे रहे हैं। उपस्थित सभी लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक गांधी जी की बातों को सुन रहे थे। सभा समाप्त हुई और वह कार्यकर्ता गांधी जी के पास गया और उनसे पूछा, बापू, मैं तो आपको लाने आश्रम गया था किंतु आप वहां नहीं थे, आप यहां कैसे आए? गांधी जी ने उत्तर दिया, जब आप 4:15 बजे तक यहां नहीं पहुंचे तो मैंने अपनी साइकिल उठाई और उसे चलाते हुए यहां आ गया। मैं अपने कारण इतने लोगों का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। यह बात सुनकर कार्यकर्ता बहुत शर्मिंदा हुआ। तब गांधी जी ने उसे समय का महत्व समझाते हुए कहा, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। गांधी जी ने सदैव समय के सदुपयोग या प्रबंधन की बात को स्वीकारा है। उनका विचार था कि कभी किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ और अमुक काम के लिए मैं समय नहीं निकाल सकता। गांधी जी के पास छोटे बच्चे से लेकर समाज के बड़े लोगों के पत्र आते थे और वे बिना किसी देरी के हर पत्र का जवाब देते थे। आश्रम के रसोई घर में प्रतिदिन सुबह का नाश्ता करने के बाद वे सब्जी काटने का काम स्वयं करते थे। कोई छोटा या बड़ा व्यक्ति जो साबरमती आश्रम में रहता हो और यदि कभी वह बीमार पड़ जाए तो गांधी जी खुद उससे मिलते और उसके उपचार की व्यवस्था किए बिना नहीं रहते। कुछ मित्रों ने उन्हें फरियाद करते हुए कहा कि आपने अभी तक साम्यवादी साहित्य नहीं पढ़ा है। गांधी जी जेल में भोजन के समय या नाश्ता करते करते ह्यूमिनिटी अपरूटेड और रेड ब्रीड पुस्तकें पढ़ डाली। बंगाल के गांव में काम करते समय स्थानीय लोगों से अपनापन बिठा सके इसलिए उन्होंने बंगाली सीखना शुरू किया, जबकि उस समय तक गांधी जी काफी वृद्ध हो चुके थे। अस्पताल में बीमार पड़े व्यक्ति के पास बैठकर पुस्तक पढ़ना या उसके पत्रों को लिखने का काम वे वकील बनने के बाद भी करते रहे। प्रतिदिन रेडियो पर 120 सूत के तार बनाना, सुबह 4 बजे प्रार्थना करना और सुबह शाम 45 मिनट के लिए टहलने का काम भी अवश्य करते थे। गांधी जी ने दातून करते करते गीता के 13 अध्याय को कंठस्थ किया था। स्वामी आनंद के कहने पर प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का अनुवाद करते। इसी के कारण हमें उनकी अनासक्ति पुस्तक प्राप्त हुई। महाभारत पढ़े बिना हिंदू धर्म का मर्म या रहस्य समझना मुश्किल है, ऐसा जानकर सन 1822 में गेरवडा जेल में महाभारत का 18 पर्व गांधी जी ने पढ़ डाला। गांधी जी कहते थे कि भारत देश की गौरवशाली और अनुकंपा भरी जीवन दृष्टि स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़कर मुझ में विकसित हुई है। सार्वजनिक जीवन में इतना सक्रिय होते हुए भी उन्होंने स्वामी जी का संपूर्ण साहित्य अक्षरशः पढ़ा हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने अपने दैनिक जीवन से लेकर बड़े कार्यों तक समय के महत्व को समझा और हमें भी यह सीख दी कि समय अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
3: नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन चतुर्थ के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं और संरक्षण, पारिस्थितिकी स्थिरता और जैव विविधता संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदार भी हैं। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक CRPF जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
5: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
3: महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से इन्होंने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं सुरंजना लेकर।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
4: जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
5: हेलो डॉक्टर,
0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
0: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं कार्यक्रम सुरंजना लेकर। कार्यक्रम सुरंजना सुनने वाले तमाम श्रोताओं को निमिषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेमलता के गाए गाने। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं ये गीत।

दोस्तों 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में जन्मी लता भट्ट, जिन्हें दुनिया ने हेमलता के नाम से जाना, उन्हें संगीत विरासत में मिला था। उनके पिता पंडित जयकुमार चोगलाम एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। हेमलता जी ने महज 7 साल की उम्र से ही मंच पर गाना शुरू कर दिया था।

दोस्तों, आज का सुरंजना हेमलता जी की मखमली आवाज़ से सजा था। आज भी उनकी आवाज़ हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है। और आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने हेमलता जी के गाए गीतों को सुना। वे फिल्में थीं अखियों के झरोखों से, आप तो ऐसे ना थे, और दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार थे रविंद्र जैन और निदा फाजली। संगीत निर्देशन था रविंद्र जैन और उषा खन्ना का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुनेंगे राग अहिर भैरव पर आधारित ये सितार वादन पंडित कार्तिक कुमार सिंह।

अभी आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव पर आधारित सितार वादन पंडित कार्तिक कुमार से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत। अब आइए सुनवाते हैं पंडित कार्तिक कुमार से ही सितार पर धुन मिश्रा भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे राग मिश्रा भैरवी पर आधारित ये सितार वादन। कलाकार थे पंडित कार्तिक कुमार। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट्स मुंबई भी जा चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS चतुर्थ के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल

0: कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulides, in New Delhi today. Mr. Christodoulides arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He also visited Mumbai. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Veftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulides to India in his current capacity. Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwani Vaishnaw at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the RJ Corps Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. The young medic was raped and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other 2 members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. He was targeted in Gojra, Muzaffarabad, where he came out of his college yesterday morning. Burhan, alias अर्जुमन

0: Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror attacks in Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations. Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. Its live feed was shared with Pakistan-based ISI handlers. Police is also looking for his three more accomplices. Union Home Minister Amit Shah today paid tributes to Raja Ram Mohan Roy on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said that through the establishment of the Brahmo Samaj, Raja Ram Mohan Roy awakened people against social superstitions. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा अमरीका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और विश्व की पहली एआई फीचर फिल्म हेल ग्राइंड का कान्स फिल्म महोत्सव में प्रीमियर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ईरान के फारसी खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण ने एक नक्शा जारी किया है। इससे होर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर गतिरोध कल और गहरा गया। इस नक्शे में उसने ईरानी तटों से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के फुजैरा और अल कुवैन बंदरगाहों तक फैले जलमार्ग के बड़े हिस्से पर अपना नियामक नियंत्रण होने का दावा किया। ईरानी संस्था ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को प्राधिकरण से पहले से अनुमति लेनी होगी। इस दावे की संयुक्त अरब अमीरात ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या 4,000 से घटाकर 3,000 कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप पोलैंड में अमरीकी सेना की तैनाती में अस्थायी देरी हुई है। मंत्रालय ने पोलैंड को अमरीका का आदर्श सहयोगी बताया। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में यूरोप में लगभग 80,000 अमरीकी सैनिक तैनात हैं। इनमें से लगभग 10,000 सैनिक पोलैंड में हैं। इससे पहले अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि अगले 6 से 12 महीनों में जर्मनी से लगभग 5,000 अमरीकी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा पर दबाव तेज करते हुए उसे एक विफल राष्ट्र और अमेरिका के लिए लगातार राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा खतरा बताया। फ्लोरिडा और व्हाइट हाउस के अलग अलग संबोधन में दोनों अधिकारियों ने क्यूबा के प्रति कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। साथ ही बातचीत के जरिए समझौते की संभावना भी खुली हुई है। ओवल ऑफिस में उदारीकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्यूबा से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा था कि अमरीका क्यूबा के लोगों और क्यूबा अमरीका के लोगों को द्वीप से फिर से जोड़ने में मदद करना चाहता है। कुछ घंटे पहले विदेश मंत्री रूबियो ने भारत रवाना होने से पहले मियामी होमस्टेड हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं अधिक तीखा आकलन प्रस्तुत किया था। इसराइल सरकार ने गजा की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सैकड़ों नौसैनिक दलों के सदस्य को रिहा कर दिया है और कुछ को निर्वासित किया है। कार्यकर्ताओं के साथ हुए इस बर्ताव पर विदेशों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते कई देशों ने इसराइल दूतों को तलब कर अपनी चिंताएं व्यक्त की। लगभग 420 कार्यकर्ता तुर्की जाने वाले विमानों से इसराइल से रवाना हुए और कल शाम इस्तांबुल उतरे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही।
4: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमित्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार

किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग कर पहला अंतरिक्षयान बनाने का इतिहास रचा था। कॉन्स फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइंड नामक इस 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप हिग्सफील्ड AI ने इस फिल्म का बुधवार को ट्रेलर भी जारी किया। फिल्म की कहानी देवी देवताओं और राक्षसों पर आधारित है। SpaceX ने टेक्सास के स्टार बेस से अपने नवीनतम और सबसे बड़े स्टारशिप V3 रॉकेट की बहुप्रतीक्षित परीक्षण उड़ान को लॉन्चिंग से ठीक 40 सेकंड पहले रद्द कर दिया। 407 फुट लंबा ये रॉकेट टेक्सास से अंतरिक्ष की लगभग आधी दूरी तय करने के लिए तैयार था, लेकिन मैक्सिकन सीमा के पास स्टार बेस स्थित बिल्कुल नए लॉन्च पैड में कुछ दिक्कतें आ गईं और कंपनी के पास समय खत्म हो गया। SpaceX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने बताया कि लॉन्च टावर आर्म को अपनी जगह पर रखने वाला हाइड्रोनिक पिन पीछे नहीं हटा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है

0: 0657-296-0445. हेलो, आपकी फरमाइश संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: हेलो डॉक्टर,
3: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
2: हेलो डॉक्टर,
3: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। शुरू के सफर में स्वागत है आपका। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं ये गाना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म दयावान से। साहिल लुधियानवी की रचना है और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आसरा से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। शब्दकार थे गुलजार और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। अब आइए सुनवाते हैं अगला गाना। रचनाकार हैं आनंद बख्शी, धुन राहुल देव बर्मन का है, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। जी हां साथियों, सुनवाते हैं ये गाना आपकी कसम फिल्म से।

आपने चुन किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। शुरू भरे सफर को आगे बढ़ाते हुए अब लीजिए सुनवाते हैं अगला नगमा। फिल्म वंश से आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की हैं। समीर की रचना है और धुन आनंद मिलिंद का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं अगला गाना फिल्म कसूर से। आवाज़ें अलका याग्निक और उदित नारायण की हैं, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है और इस गीत को रचा है समीर ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्पेशल 26 का ये गाना। आवाज़ें थी MM क्रीम और KK की। इस गीत को रचा था इरशाद कामिल ने, संगीत निर्देशन MM क्रीम का था। श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइट्स की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होना है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और राज्य को अनेक नई रेल सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री आज जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसमें पहले केवल 8 डिब्बे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में RG कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोडे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोडर ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। ये हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि समृद्ध जैव विविधता सतत विकास की अनगिनत चुनौतियों का समाधान है। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजेय शक्ति का प्रमाण है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे खूबसूरत से नगमे के साथ, उसके बाद करेंगे आपसे बातचीत। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

उदित नारायण की आवाज में भी आप सुन रहे थे। सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत शब्द रचना थी समीर की और तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने।

दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ हंसी और मस्ती का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी, सोच और अच्छे विचारों का भी सफ़र है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ हम लेकर आए हैं एक ख़ास और समझदारी से भरा कार्यक्रम, जिसको आप सुनते हैं हर दिन सुबह 11:05 से, जिसमें दिल को छू लेने वाली बातें, समाज से जुड़े मुद्दे, रिश्तों की अहमियत और ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाले विचारों की बातें करते हैं हम, ताकि कुछ पल खुद के लिए आप निकालिए, सोचिए, समझिए और महसूस कीजिए। क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि जिंदगी को नई दिशा देने की एक छोटी सी कोशिश भी है। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की हरियाली, बारिश की मिट्टी की खुशबू, पहाड़ों की शांति, नदियों का संगीत और चिड़ियों की मीठी आवाज़, अगर ये सब हमारी ज़िंदगी से चली जाए तो क्या बचेगा हमारे पास मित्रों? क्योंकि प्रकृति हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांस है। प्रकृति हमें बिना मांगे सब कुछ देती है, साफ हवा, पानी, फल फूल, पेड़ पौधे के साथ एक खूबसूरत एहसास। लेकिन दोस्तों, आज हमारी लापरवाही की वजह कर ये खूबसूरती धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसका असर ये हो रहा है कि मौसम बिगड़ रहा है, प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है, जानवर और पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। आज जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, वही कल हमारी सांसें कम कर देंगे, इसलिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रकृति से जुड़ा एक गीत, जो इसकी खूबसूरती को दिल में उतार देता है।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे एक बार फिल्म का ये गीत। अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाजें थी। विनोद पांडे ने इस गीत को लिखा था और पंडित रघुनाथ सेन ने संगीतबद्ध किया था।

प्रकृति की खूबसूरती को दर्शाता ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना। उन्हें ये समझाना कि अगर जैव विविधता सुरक्षित रहेगा तब धरती पर जीवन सुरक्षित रहेगा। हमारे आसपास मौजूद अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पक्षी, जंगल, नदी और उनकी प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। धरती पर जीवन के जितने भी रंग हैं वही जैव विविधता है। विश्व जैव विविधता की शुरुआत साल 1993 में हुई थी। दोस्तों मित्रों, साल 2026 के अगर हम थीम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है स्थानीय स्तर पर कार्य वैश्विक प्रभाव के लिए। इस थीम का संदेश है यदि हर व्यक्ति अपने आसपास प्रकृति की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाए तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इसका एहसास ना हो लेकिन जैव विविधता हर दिन आपके लिए काम कर रही है। ये उस स्वच्छ हवा में मौजूद है जिसमें आप सांस लेते हैं, उस ताजे भोजन में जो आपकी थाली में है और उन हरे भरे स्थानों में जो आपके मन को प्रसन्न करते हैं। हमारे पर्यावरण में मौजूद हर जीव प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है, चाहे वो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म कवक हों या समुद्र में तैरती विशाल नीली वेल। नीचे हम और इसके ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है मित्रों, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है जैव विविधता।

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर हमारे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपसे करेंगे बातचीत और सुनवाएंगे कुछ और मधुर गीत। तो सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

दोस्तों, आए दिन अखबार में, न्यूज़ चैनलों में आत्महत्या से जुड़ी कई खबरें सामने आती रहती हैं। आखिर ये घटनाएं होती ही क्यों हैं, जबकि हर इंसान ये जानता है कि जीवन ईश्वर का दिया सबसे सुंदर उपहार है। आजकल तनाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। परेशानियां, पारिवारिक कलह और मानसिक दबाव के कारण कई लोग अपनी उम्मीद ही खो बैठते हैं और आत्महत्या कर बैठते हैं। लेकिन आत्महत्या हर समस्या का समाधान नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो इंसान और उसके परिवार को झिकझोर कर रख देता है। इसके कई कारण भी होते हैं, जैसे लगातार तनाव और मानसिक दबाव, बेरोजगारी, आर्थिक परेशानी, परीक्षा में असफलता, नशे की लत और समाज का डर या अपमान का भय। कभी कभी हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, लेकिन किसी से हम अपनी बात नहीं कह पाते। जब इंसान अपने दर्द को दिल में दबा लेता है तो वही दर्द धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला बनाने लगता है, बल्कि यूं कहें कि खत्म करने लगता है। लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। जिंदगी किसी एक परीक्षा या एक असफलता का नाम तो नहीं है। जिस इंसान ने संघर्ष करना सीख लिया, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। मुश्किलें हमें खत्म करने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मित्रों, आत्महत्या केवल एक इंसान की मौत नहीं होती, उसके साथ मर जाते हैं कई सपने, टूट जाते हैं कई रिश्ते और जिंदगी भर रोता है उसका परिवार। तो मित्रों, कभी भी अपने परिवार को उस दर्द में मत छोड़िए, क्योंकि आपका होना किसी के लिए पूरी दुनिया है। इससे बचा भी जा सकता है। आप अपने मन की बात किसी से शेयर जरूर करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, खुद की तुलना किसी दूसरे से कभी भी ना करें। अगर तनाव ज्यादा है तो चिकित्सक से मदद भी ले सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़िए और इन सबसे जरूरी है, खुद से प्यार कीजिए। और मित्रों, अगर आपके आसपास कोई उदास है तो आप भी उसे अकेला मत छोड़िए, उससे बात कीजिए, उसकी तकलीफों को सुनिए, क्योंकि कई बार सिर्फ किसी का साथ किसी के जिंदगी को बचाता है। किसी का थोड़ा सा प्यार, किसी की परवाह भी जीने की उम्मीद बन जाती है। दूसरों की मदद कीजिए, खुश रहिए और जिंदगी को दिल से जीना सीखिए।

दिल बेचारा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साशा तिरुपति की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा था और A.R. रहमान ने संगीतबद्ध किया था। दोस्तों, ये सबक आमोज गीत अभी आप सुन रहे थे जिसमें जिंदगी गुजारने के सबक को खूबसूरती से लफ्जों में पिरोकर पेश किया गया था।

और अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान शख्सियत की जिन्होंने भारतीय समाज में नई रोशनी जगाई। बात एक ऐसे समाज सुधारक के अग्रदूत, महान विचारक और आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय की। मित्रों, जब भारत का समाज कई कुरीतियों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, जब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा समाज पर एक कलंक बनी हुई थी, तब एक आवाज उठी, एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ, एक ऐसा इंसान हमारे सामने आया जिसने कहा, समाज बदल सकता है अगर सोच बदल जाए। ।22 मई 1772 को बंगाल की धरती पर जन्मे राजा राम मोहन राय बचपन से ही तेज बुद्धि और प्रगतिशील सोच वाले थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें हासिल था, लेकिन उनका सबसे बड़ा ज्ञान था मानवता। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी सती प्रथा के खिलाफ। उनकी मेहनत और संघर्ष के कारण 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा। राजा राम मोहन राय सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि महिला शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के भी समर्थक थे। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि धर्म का असली मतलब इंसानियत है, न कि अंधविश्वास। और इन्हीं सब कारणों से उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। ऐसे महान समाज सुधारक को हमारा शत शत नमन। आइए दोस्तों, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, बेटियों को शिक्षा दें, समाज से बुराइयों को मिटाने का प्रयास करें और एक जागरूक भारत का

पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़।

इंदिवर के बोल को संगीत के पिरो में, संगीत के शुरू में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

मित्रों, अभी हम बातें कर रहे थे समाज सुधार, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी और युवाओं को जागरूक बनाने का काम भी किया। मित्रों, आज का समय सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि स्किल यानी हुनर का भी है, इसलिए रोजगार समाचार आपके लिए लेकर आता है नई नौकरियों की जानकारी, प्राइवेट सेक्टर के अवसर, स्किल डेवलपमेंट कोर्स और आत्मनिर्भर बनने के नए रास्ते। आज के इस कार्यक्रम में रोजगार समाचार हम लेकर आए हैं, जिसमें आप सुनेंगे नई नौकरियों की जानकारी।

भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। शैक्षणिक योग्यता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इस पद के लिए आयु सीमा है न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष। और वेतनमान है 64,820 रुपए से लेकर 93,960 रुपए प्रतिमाह। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट https://sbi.bank.in पर सर्च कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 29 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, स्नातक की डिग्री हो, प्रशासनिक या स्थापना या लेखा कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान है 90,000 रुपये और आयु सीमा है अधिकतम 35 वर्ष। अधिकतम जानकारी के लिए https://upsc.gov.in पर सर्च करें।

यस बॉस, इस फिल्म का गीत भी आपने सुना। अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ थी, जावेद अख्तर के बोल और जतिन ललित का संगीत। और ये गीत भी दोस्तों काफ़ी मानेखेज़ था।

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना जेम के सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का

आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राम मोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम भावगीत। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं यह संदेश।
1: कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: भावगीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम सफर तू, दिल के हर सफर में साथ चलने वाला वो एहसास जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, और जब प्यार की बातें हों तो संगीत खुद ब खुद दिल की धड़कन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं इशरत। वक्त हो चला है उस गीत का जो मोहब्बत की नर्म बारिश सा एहसास दिलाती है। अगर कोई आपके साथ हर मोड़ पर खड़ा हो, हर खुशी और हर गम में आपका हम सफर बन जाए तो जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी से कम नहीं लगती। तो चलिए प्यार एहसास और दिल की बातों को संगीत में पिरोते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

मित्रों, कभी कभी जिंदगी की भीड़ में इंसान सब कुछ पाकर भी कुछ खोया खोया सा महसूस करता है। दिल किसी ऐसे एहसास को ढूंढता रहता है जिसका नाम शायद खुद उसे भी नहीं पता होता, और यही एहसास इस गीत की हर लाइन में सुनाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपकी यादों में भी कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा सपना है, या फिर जिंदगी से कोई सवाल है, तो ये गीत आपके दिल को जरूर छू जाएगा। चलिए खो जाते हैं, जाने क्या ढूंढता है कि उस गहराई में, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास बोलने लगते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत जब दिल में उतरती है ना, तो हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत लगने लगता है। रात की खामोशी भी गीत बन जाती है और चांद की रोशनी किसी अपने की याद। अब ज़रा सोचिए, अगर प्यार में दूरियां हो, हल्की हल्की नाराज़गी हो, लेकिन दिल फिर भी उसी एक इंसान के लिए धड़कता रहे, तो एहसास कैसा होगा? बस वही मासूम एहसास लेकर आया है ये टू स्टेट मूवी का बेहद खूबसूरत गीत। इस गाने की मिठास, इसके सादगी और दिल को छू लेने वाले बोल हर सुनने वाले को अपने किसी ख़ास की याद दिला देता है। और जब रात थोड़ी ठंडी हो, सफ़र लंबा हो या फिर यादें साथ हों, तब ये गीत सीधे दिल में उतर जाता है। तो चलिए दोस्तों, मोहब्बत की इसी नर्म सी रोशनी में डूब जाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत, और अब उन फिल्मों के नाम आपको बताते चलें जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। एक विलेन रिटर्न्स, सिंघम, सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ, टू स्टेट्स, और इसी के साथ भावगीत कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ।

0: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना,
3: रिलैक्स।
0: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं राग भीम पलासी में पंडित जसराज का ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे राग भीमपलासी में पंडित जसराज का ख्याल गायन, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं गौड़ राग गौड़ सारंग में पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन।

पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन अभी आप सुन रहे थे, राग था गौड़ सारंग। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने ही वाले हैं, अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
2: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश। अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने उड़ीसा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ। 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने

हजार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जबकि जुडिशियल इंक्वायरी

0: कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध किए गए 2 लाख रुपए के लेन देन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही संक्षिप्त शटडाउन की अनुमति दी है। पाकुड़ जिले के झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए हुआ है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह पंचायत जिले के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरक बनेगा।
1: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है। अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण, उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जिसमें कि महिलाओं के समूह को इंक्लूड किया जाए।
0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एमडीआई गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेल के भविष्य में लीडर्स तैयार करना है। इसके तहत संयुक्त रिसर्च, केस स्टडीज और कस्टमाइज लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने चालीयामा स्टील प्लांट और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट, चेतावनी बोर्ड और 2 नए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक को लक्ष्मण बताते हुए मर्यादा में रहने की सलाह दी।
2: तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो बंद कराएगा, उसका कोई नहीं बंद करा सकता है। छोटे भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो, उद्दंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको मनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा।
0: वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए सांसद को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए।
3: स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपना एक्समैन वहां खड़ा किया गया, जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा, ये स्पोर्ट्स के लिए घातक है। हर जगह हजारीबाग के लोगों की सहभागिता होना चाहिए। लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि किसी का बकौती नहीं है।
0: हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे।
4: 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये सभी इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो नेटवर्क है ये चतरा से लिंक्ड है और जहां से ये सामान लाता था उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई वो करेंगे।
0: पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छतरपुर में ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक अनाथ बेटी की शादी कराई। पाटादोहर निवासी बर्ती कुमारी की शादी अर्जुन सिंह से तय कर ग्रामीणों ने इसे संपन्न कराया। इस विवाह का पूरा खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। इंडियन सुपर लीग

बॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फुटबॉल सीजन का समापन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में दबदबा बनाने के बावजूद टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ जमशेदपुर 22 अंकों के साथ लीग में पांचवें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश। अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकराहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ। 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ से पहले यह संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: उपभोक्ताओं तक पहुँचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
6: नमस्कार जमशेदपुर।
0: और अब हम हाजिर हैं श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत को लेकर। कीजिए कबूल इशरत का आदाब।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे एक बार चले और फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी चांद परदेसी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: ब्रेक के बाद आइए, हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत के सुरों में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कर्तव्य का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: लाखों में एक फिल्म का ये गीत शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और तर्ज बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत भी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा।
2: बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ब्रेक के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कंपनी का ये गीत। अल्ताफ राजा की आवाज़ है, ताबिश रूमानी ने इस गीत को लिखा है।

फिल्म संसार का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ थी और तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ अपनी रेडियो सखी इशरत को दीजिए इजाज़त। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से बस थोड़ी देर बाद।

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीता अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
4: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईदुल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाएंगे संतराल के बाद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का।

सुषमा श्रेष्ठ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी आनंद मिलेंद्र ने। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नाम फिल्म का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था समीर ने और ये था कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र अब ख़त्म हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरास और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर महागठबंधन मजबूत स्थिति में है।
2: बिल्कुल, ये दोनों सीट

0: जो महागठबंधन के हाथ में होगा। और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी, इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि बता सकूंगा कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें।
1: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। उन्होंने कहा कि नई सीबीएसई नीति के तहत कक्षा 9 में 2 अतिरिक्त भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। उन्होंने न्यायालय के मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने राज्य सरकार से आम जनता को राहत देने के लिए बिजली व्यवस्था में शीघ्र सुधार सुनिश्चित करने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवा, हल्की आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहने का अनुमान है। पलामू, गढ़वा, सरायकेला और जमशेदपुर जैसे जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। यह है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के।

0: नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
1: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
1: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुम्बाई,
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षावन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी,
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।

0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
2: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मरदा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान हैं।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।

0: ये तो है।
1: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
1: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
1: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
4: अजी सुनिए।
5: हाँ।
4: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
5: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
4: हाँ।
5: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
4: अरे अरे, इसको भी डालो।
5: हाँ,
4: ये देखो
5: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये, ये पौधा कितना हाँ। छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
4: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
5: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे, और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
4: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
5: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
6: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
7: हमारा शहर हो
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
3: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
8: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
2: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
1: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
2: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
9: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
2: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसी सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार। कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश। बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इसके तहत आइए सुनते हैं संतूर वादन। कलाकार हैं भजन सुपोरी।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब से बस थोड़ी देर बाद।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत, आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ कुड़माली लोकगीत। कलाकार हैं पटेल महतो, लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कुड़माली झूमर, कलाकार हैं पटेल महतो। लीजिए सुनिए इनकी अंतिम प्रस्तुति।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को जोहार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब सुबह थोड़ी देर बाद

0: के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि दोनों सीटों के आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई सीबीएसई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। मॉनिटर लिजर्ट के अंगों की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट ने आज उन्हें और उनके बेटे अविनाश रंजन को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि विलुप्त प्रजाति के पशु के अंगों की तस्करी के आरोप में राजीव रंजन मिश्रा और उनके बेटे अविनाश रंजन और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया था। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोल कंपनियों से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी की घटना में शामिल जेजेएमपी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और अब पेश है बज्म कव्वाली। फनकार हैं नुसरत फतेह अली खां। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली पेशकश।

शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। नमस्कार।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में आपने सुना फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत। समीर के बोल थे और संगीत था हिमेश रेशमिया का।

अदनान सामी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो, इसका ये गीत। बोल लिखे थे संदीप श्रीवास्तव ने और धुन बनाई थी प्रीतम चक्रवर्ती ने। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

दिल है तुम्हारा। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजें थी, समीर के बोल थे और संगीत था नदीम श्रवण का।

जगजीत सिंह की आवाज में आपने सुना ये गीत सरफरोश फिल्म से। नगमा निगार थे नदा फासले और संगीत जतिन ललित ने बनाई थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत।

वरुण जैन और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना फिल्म मालिक का ये गीत। बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन सचिन जिगर ने बनाई थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से 23 मई से अपने मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित अनमैप्ड मतदाता सूची में नाम जांचने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह सूची अगले दो सप्ताह तक सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब विद्युत व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और बार बार ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री से इस मामले में उच्च स्तरीय समीक्षा कर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाएं के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में आम्रपाली परियोजना में कार्यरत एनसीसी लिमिटेड से लेवी मांगने, धमकी देने और आगजनी करने के मामले में पुलिस ने जेजेएमपी के सक्रिय सदस्य रविंद्र सिंह उर्फ रविंद्र सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। 24 जनवरी को 5 अपराधियों ने कंपनी के ट्रक को रोककर सुपरवाइजर और ड्राइवर से मारपीट की तथा ट्रक में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। झारखंड में मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों के दौरान कोडरमा, रामगढ़ और रांची समेत आसपास के कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बिजली

0: बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। मैं हूं ज्योति और मैं आज लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। सुबह उठते ही जब हम खिड़की खोलते हैं तब कितना प्यारा नज़ारा होता है ना, इस डाल से उस डाल फुदकती चिड़िया, फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियाँ, नर्म घास पर ओस की बूंदें, ताजगी भरी हवा, कितना अच्छा लगता है ना ये सब। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जब ना पेड़ हो, ना फूलों पर तितलियां हो, न ही चहचहाती चिड़ियां हो, नदियों का पानी सूख चुका हो, आसमान बेरंग हो चुका हो। अजीब लगा ना, पर ये बात हम सभी जानते हैं कि ये सच होते देर नहीं लगेगी। क्या यही विरासत छोड़ जाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए? आज 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है और आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है जैव विविधता संरक्षण में युवाओं की भूमिका। साथ ही चर्चा करेंगे कुछ और जरूरी बातों पर, जिसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अंत तक। जैव विविधता सुनने में कितना बड़ा शब्द है ना, पर उतना ही सरल अर्थ है इसका। प्रकृति में मौजूद अलग अलग प्रकार के जीवन और उनका संतुलन ही जैव विविधता कहलाता है। धरती पर 87 लाख से ज्यादा स्पीशीज हैं। पेड़, जानवर, पक्षी, कीड़े, मछलियाँ, बैक्टीरिया सब मिलकर एक बड़ा परिवार बनाते हैं। आखिर क्यों जरूरी है जैव विविधता? जैव विविधता पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। हर जीव किसी न किसी रूप में फूड चेन से जुड़ा हुआ है। अगर एक प्रजाति बढ़ती है या कम होती है तो बाकी पर उसका असर पड़ता है। बहुत सारी दवाइयाँ पौधों और सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती हैं। साथ ही खेती, मछली पालन, पर्यटन और वन उद्योग भी जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जंगल और समुद्री जीव कार्बन डाइऑक्साइड कम करने, ऑक्सीजन देने और जलवायु संतुलित रखने में मदद करते हैं। पेड़ पौधे मिट्टी का कटाव रोकते हैं, वर्षा चक्र बनाए रखते हैं और वाटर सोर्सेज को सुरक्षित रखते हैं। आर्थिक से लेकर स्वास्थ्य तक सारी सुविधाएं जैव विविधता हमें देती है। इसलिए हमें जैव विविधता से जुड़े हर एक जीव की रक्षा करनी चाहिए। हर एक छोटे जीव का उतना ही महत्व है जितना कि हमारा। एक मधुमक्खी का ही उदाहरण ले लीजिए। मधुमक्खी नहीं होगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा, फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे, फसल का उत्पादन कम होगा, फिर हम क्या खाएंगे? इससे पता चलता है कि जैव विविधता संरक्षण कितना जरूरी है। आज हर दिन 150 से 200 स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। गंगा में रोजाना 3 करोड़ लीटर सीवेज गिरता है। केरला में कई बार नदियों को जलकुंभी ने ढक लिया। जरा सोचिए जलीय जीवों की हालत। हम सभी को आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे अकेले प्रयासों से क्या हो जाएगा, पर शायद हम ये भूल रहे हैं कि एक अकेले चाणक्य ने नंद साम्राज्य की बुनियाद हिला दी थी, एक अकेले दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया था। इरादे पक्के हो और खुद पर भरोसा हो तो अकेला इंसान क्या नहीं कर सकता। आइए सुनाते हैं आपको रियल लाइफ स्टोरीज कुछ ऐसे हीरोज की जिन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई पीछे ना आया तो क्या होगा, किसी ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा। असम के रहने वाले जादव पायेंग, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने देखा कि बाढ़ के बाद कई सांप गर्मी से मर गए क्योंकि वहां पेड़ नहीं थे। महज 16 साल की उम्र से उन्होंने पेड़ लगाना

शुरू किया और दशकों की मेहनत के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 1360 एकड़ में फैला जंगल तैयार किया, जिसे मोलाई फॉरेस्ट कहा जाता है। आज इस जंगल में कई जीवों की प्रजातियां रहती हैं। भारत सरकार ने 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेडी टार्जन ऑफ झारखंड जमुना टुडू, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से पेड़ों को बचाने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन चलाए और महिलाओं के साथ मिलकर समिति बनाई, हजारों पेड़ कटने से बचाकर एक मिसाल बनी। 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। पूर्णिमा देवी वर्मन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने इनडेंजर्ड पक्षियों, खासकर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसे स्थानीय भाषा में हरगिला कहा जाता है, उस पर रिसर्च की है। ये एक बहुत ही दुर्लभ और संकटग्रस्त पक्षी है। स्थानीय लोग इसे अशुभ मानकर इसका शिकार करते थे। 2007 में इन्होंने देखा कि लोगों ने एक पेड़ काट दिया जिस पर इस पक्षी का घोंसला था और छोटे बच्चे थे। तभी से उन्होंने अपना सारा जीवन इस पक्षी को समर्पित कर दिया, जागरूकता अभियान चलाया, घायल पक्षियों का इलाज करवाया और महिलाओं को अपने अभियान का हिस्सा बनाया। नारी शक्ति पुरस्कार 2017, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, विटली अवार्ड 2017-2024 जैसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। अपराजिता दत्ता भारत की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जो उत्तर पूर्व जंगलों, हॉर्नबिल पक्षियों और जैव विविधता संरक्षण के लिए जानी जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों पर रिसर्च की और साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाई। उन्होंने ये भी बताया कि हॉर्नबिल जंगलों के माली हैं, क्योंकि वो बीज फैलाकर जंगलों को जीवित रखने में मदद करते हैं। उनका काम ग्लोबल कंजर्वेशन सर्कल में बहुत सम्मानित है। और भी कई युवा हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं बदलाव और खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं एक प्यारा सा गाना उन सभी युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए।

0: ये गाना है फिल्म तारे जमीन पर का, जिसके गीतकार हैं प्रसून जोशी, संगीतकार शंकर एहसान लॉय और इसमें आवाज दी है रमन महादेवन ने। हमने बात की कुछ हस्तियों के बारे में जिन्होंने इस क्षेत्र में उम्दा काम किया है। आइए जानते हैं अब कि युवा किस तरह इन समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। जापानीज बोटेनिस्ट डॉक्टर मियावाकी ने एक नया तरीका निकाला है जिसमें स्थानीय पौधों को बहुत पास पास लगाया जाता है। अब इस तकनीक का प्रयोग भारत के युवा कर रहे हैं। रायपुर के वॉलेंटियर्स ने गांधी उद्यान में सिर्फ 5000 स्क्वायर फीट में 2500 पौधे लगाए। ये जंगल आम प्लांटेशन से 30% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं। नागालैंड के युवाओं ने झूम खेती के बाद खाली पड़ी जमीन को जंगलों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। गोवा में ब्रायन मिरांडा नाम के युवा रिसर्चर गिटार फिश को बचा रहे हैं, जो एक दुर्लभ स्पीशीज है। आई नेचुरलिस्ट और ई बर्ड जैसे एप्स अब युवा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें किसी भी जीव की फोटो अपलोड करने से वैज्ञानिकों को रियल बायोडायवर्सिटी डेटा मिलेगा। स्थानीय युवा भी इसमें पीछे नहीं है, कई लोग जागरूक हो रहे हैं। कुछ दिन पहले की ही बात ले लीजिए, आदिवासी समुदाय के द्वारा सेंद्रा पर्व मनाया गया, जिसमें उन्होंने दलमा पहाड़ पर चढ़ाई करके अपनी परंपरा को कायम रखा, पर किसी वन्य जीव का शिकार नहीं किया। सेंद्रा वीरों ने जागरूक नागरिक और प्रकृति प्रेमी होने का परिचय दिया। आइए जानते हैं जमशेदपुर के युवा जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं और उनकी इस विषय पर राय।
1: नमस्कार, मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं कम्युनिटी लेवल पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस एक्टिविटीज से एक्टिवली एसोसिएटेड हूँ। हम लोग मेनली ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं और स्पेशली यूथ को इंस्पायर करते हैं कि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और नेचर कंजर्वेशन के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हमारा मानना है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हर सिटीजन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही ये इनिशिएटिव उन सभी वॉरियर्स के रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस में शुरू किया गया है जिन्होंने नेचर, एनवायरनमेंट, देश, पर्यावरण, मर्यादा और मानवता को सर्वोपरि मानते हुए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हम उनके आइडियल्स और सैक्रिफाइसेस से प्रेरणा लेते हुए सोसाइटी में पॉजिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मानना है कि असली वॉरियर्स वही होते हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस और प्रकृति के लिए भी जीते हैं। आज के टाइम में रैपिड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी जो 42 से 43 डिग्री तक एक्सट्रीम हीट और टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट इम्बैलेंस और डिक्रीजिंग ग्रीन कवर का ही रिजल्ट है। पहले के कंपैरिजन में गर्मी का इंटेंसिटी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज, वाटर प्रॉब्लम्स और डेली लाइफ में भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। इसी वजह से हम लोग लोकल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग प्लांट्स, वाटर रिसोर्सेस और लोकल बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के इम्पोर्टेंस को समझ सके। ट्रीज नेचुरली टेम्परेचर कंट्रोल करने, एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने और एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम रेगुलर प्लांटेशन एक्टिविटीज के थ्रू डिफरेंट एरियाज में सैपलिंग्स लगाते हैं और लोगों को ये भी समझाते हैं कि सिर्फ प्लांटेशन इनफ नहीं होता, मेन काम है उनका प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ यूथ एंगेजमेंट पर काफी फोकस किया जाता है, क्योंकि यंग जनरेशन फ्यूचर में एनवायरमेंटल लीडरशिप का इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगी। इस इनिशिएटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट धीरे धीरे देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे यंग पीपल वॉलेंटरली ज्वाइन कर रहे हैं। लोकल कम्युनिटी में एनवायरमेंटल अवेयरनेस इंक्रीज हुई है और ग्रीनरी को लेकर लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। जब लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, तब उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचर के प्रति कनेक्शन दोनों डेवलप होता है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का डायरेक्ट बेनिफिट सिर्फ एनवायरनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इससे क्लीन एयर, बेटर क्लाइमेट बैलेंस, सॉइल प्रोटेक्शन और ओवरऑल हेल्थ इकोसिस्टम मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। अगर हम आज नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तभी फ्यूचर जनरेशन को एक सेफ और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिल पाएगा। एक इनिशिएटिव सब कुछ ना बदले, लेकिन एक सच्ची और ईमानदार कोशिश जरूर बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है, क्योंकि बदलाव हमेशा एक सोच और छोटे कदम से ही शुरू होता है। मुझे लगता है कि स्मॉल एफर्ट्स भी लॉन्ग टर्म में बिग चेंज क्रिएट कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंसी, यूनिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। धन्यवाद।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अब समय है खुद की जिम्मेदारी समझने का और जागरूक होने का। सबकी कोशिश रंग लाएगी, इसलिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करें। मैंने शुरुआत में बताया था, जैव विविधता लाखों लोगों के लिए रोजगार का साधन है। अब हमारी चर्चा का अगला विषय है एक ऐसा सपना जो हर नौजवान की आंखों में चमकता है, रोजगार, आत्मनिर्भरता और पहचान। आज हम बात करेंगे गांव से दुनिया तक की, मिट्टी से सोना बनाने की। आप युवा हैं, रोजगार के अवसर बनाना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि गांव की मिट्टी को पहचान कैसे दिलाएं। मन में सवाल होंगे, शुरू कहां से करें, सीखें कैसे, पैसे कहां से आएंगे, क्या शुरू करें। आपकी सारी परेशानियों का समाधान लेकर आई हूं मैं आज। शुरुआत की जा सकती है ऑर्गेनिक खेती और वर्मी कंपोस्ट बनाने से। रासायनिक खाद के कई नुकसान हैं, जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाना कारगर होगा। अपने प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स और पशुपालन भी गांव में कारगर साबित होता है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का लोकल ब्रांड बना सकते हैं, इससे आसपास लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मशरूम कल्टीवेशन रोजगार का एक बेहतरीन और फायदेमंद विकल्प है। किसान खेती के साथ साथ इसे साइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं, पर इसके लिए जानकारी जरूरी है, तो पहले आपको सीखना होगा। हस्तकला जैसे बांधनी, चिकनकारी, डोकरा, चंदन की नक्काशी, मीनाकारी, ये रोजगार के अच्छे अवसर हैं। इससे हमारी परंपरा भी जीवित रहेगी और टेक्नोलॉजी आपके काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए है ही। मधुमक्खी पालन, ड्रोन से दवाइयों का छिड़काव, ये सब अच्छे अवसर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भी एक अच्छा उपाय होगा। बैंक से जुड़े कार्य, दस्तावेज बनवाना काफी राहत देगा ग्रामीणों को। पर अब सवाल ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे, काम कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता पहचाननी है। क्या आपके पास जमीन है, हुनर है, टेक्नोलॉजी सीखने की चाहत है, उस हिसाब से काम चुन लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कृषि विज्ञान केंद्र में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि, ये सब आपकी सहायता करेंगे। बाजार में बेच नहीं पा रहे तो ऑनलाइन रास्ता चुनिए, आपके काम को पहचान मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या मजाक उड़ाएंगे। ऐसे में पीछे नहीं हटना है, लोगों के तानों को तालियों में बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। मन से डर निकालो और शुरू हो जाओ। सरकार की आने वाली नीतियों के बारे में जानकारी रखिए। कई डेयरी, कपड़े, ऑर्गेनिक हर्ब वाली कंपनियां हैं जो गांव की मिट्टी से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर राज कर रही हैं। तो मन से शंका मिटा दीजिए और बस ये सोचिए कि बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अकेले चलने से कभी डरिए मत, क्योंकि चलना शुरू तो करिए, लोग साथ आते जाएंगे। इसी बात पर मैं सुनाना चाहूंगी मजरू सुल्तानपुरी की दो पंक्तियां। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आइए सुनते हैं एक गीत जो प्रोत्साहन देता है कुछ कर दिखाने वाली जिद को।

ये गीत है फिल्म मैरी कॉम का, जिसके गीतकार हैं प्रशांत इंगोले, संगीतकार शशि सुमन और इसे आवाज दी है विशाल ददलानी और जियोकोंडा वेसिचेली ने। आपका साथ सब देंगे, बस शुरुआत करिए। सबसे बड़ा साथी टेक्नोलॉजी ही साबित होगा, पर जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है तो ऐसे भी लोग हैं जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज की आखिरी चर्चा का विषय है युवाओं के साथ ऑनलाइन फ्रॉड। आज का जमाना इंटरनेट का जमाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, इंटरनेट एक शक्तिशाली हथियार है, पढ़ाई के लिए, दोस्ती के लिए, रोजगार के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। पर जैसी सावधानी हम असल दुनिया में रखते हैं, अपना फोन अजनबी को नहीं देते, अपना सामान कहीं भी नहीं छोड़ते, वही सावधानी ऑनलाइन दुनिया में भी दिखानी होगी। भारत वो देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या रहती है। हमारे युवा समझदार हैं, पर क्या बस समझदारी इन अपराधों को कम कर सकती है? जी नहीं, जागरूकता उतनी ही जरूरी है। इसी के साथ अब युवाणी कार्यक्रम से अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी शाम को और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए जागरूक रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ आगे के कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।

युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आइए सुनते हैं अब हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

कल कारखाने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को स्नेहलता का नमस्कार। श्रोता साथी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको आज के अंक की रूपरेखा बता दें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वार्ता पृथ्वी पर जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन। इसके साथ ही साथ गीत संगीत का आनंद तो हम लेंगे ही, लेकिन सबसे पहले करेंगे आपसे छोटी सी बातचीत। श्रोता साथी, आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है जैव विविधता और इससे जुड़ा हमारा भविष्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर और प्रकृति की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? यही विविधता, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं, हमारे जीवन का आधार है। हमारी सांसों की ताजगी, खाने का अनाज, दवाइयां और पर्यावरण का संतुलन सभी जैव विविधता पर ही तो निर्भर करता है। लेकिन विचारणीय है कि जंगलों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण कई जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसके लिए हम मनुष्य जिम्मेदार हैं। मित्रों, सोचिए, अगर हमारी प्रकृति जो इतनी खूबसूरत है, यदि इसका संतुलन बिगड़ गया तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे भविष्य पर। इसलिए समय रहते हम इसे संतुलित करने के प्रयासों पर ध्यान दें और उसे अमल में लाएं। हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि इसे पर्यावरण संतुलित होगा। इससे प्रदूषण से पृथ्वी और प्रकृति को बचाने का मानव प्रयास जरूरी है। पानी का उपयोग जरूरत के हिसाब से, अनावश्यक पानी के बहाव पर रोक लगाना भी जरूरी है। पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकृति की रक्षा जरूरी है और इसके लिए हम सभी को एक संकल्प लेना होगा। आओ, प्रकृति को बचाएं और अपना भविष्य सुरक्षित बनाएं।

आप सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म का गीत, शब्द रचना भरत व्यास के थे, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था, स्वर मुकेश के।

0: बढ़ते श्रोताओं कार्यक्रम में आगे लेते हैं जानकारी वार्ता के जरिए पृथ्वी पर जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन, यह विषय आज की वार्ता का। वार्ताकार होंगे बसंत कुमार मंडल।
1: वन हमारे पर्यावरण के फेफड़े हैं। ये न केवल जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि हजारों वनस्पति और प्राणी प्रजातियों का घर भी है। वनों में पाई जाने वाली जैव विविधता पृथ्वी के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवित प्रजातियों, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव आदि की विविधता। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहाँ वनों की जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध है। विभिन्न प्रकार के वनों जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शुष्क पर्णपाती वन, भारतीय वन और मैंग्रोव वनों में अनगिनत प्रकार की वनस्पतियां और जीव रहते हैं। वनों में जैव विविधता इन कारणों से महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी संतुलन, हर प्रजाति का अपना एक स्थान और भूमिका होती है। कोई पोषक चक्र को बनाए रखता है, कोई परागण में मदद करता है तो कोई अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करता है। जलवायु नियंत्रण, वन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित करने में सहायक मिलती है। जल संरक्षण, वनों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती हैं। औषधीय पौधे, वनों में हजारों औषधीय पौधे होते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, वनों से मिलने वाले संसाधनों जैसे लकड़ी, गोंद, रेजिन, फल फूल आदि से लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। कई जनजातियां और समुदाय वनों पर निर्भर हैं। पर्यावरण संतुलन का जैव विविधता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब जैव विविधता समृद्ध होती है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है। इससे भोजन श्रृंखला सुचारू रहती है, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम होता है और रोगों के फैलाव पर नियंत्रण रहता है। वनों में जैव विविधता वातावरण को शुद्ध रखने, मृदा अपरदन को रोकने और वर्षा

चक्र को संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। वर्तमान संकट की चर्चा करें तो वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण वनों में जैव विविधता को गंभीर खतरा है। वनों की अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और औद्योगिकरण, अवैध शिकार और वन्य जीव व्यापार, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इन कारणों से कई वनस्पति और जीव प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं या संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच गई हैं। संरक्षण के उपाय। वनों की जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ प्रमुख उपाय आवश्यक है। वन संरक्षण और पुनः वनीकरण, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों का विस्तार, स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों में शामिल करना, पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता, कठोर कानून और का क्रियान्वयन। वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और पर्यावरण संतुलन का मूल आधार है। यदि हम प्रकृति की इस अमूल्य संपदा को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। अतः यह हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि हम वनों की जैव विविधता को संरक्षित करें और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अपना योगदान दें। जैव विविधता, विशेष रूप से वनस्पति जैव विविधता, पृथ्वी के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ पौधे न केवल प्राण वायु ऑक्सीजन का स्रोत है बल्कि जलवायु, मृदा की उर्वरता और जीव जंतुओं के आवास पर भी आधार हैं। लेकिन आधुनिक युग में बढ़ते पर्यावरणीय संकटों ने इस जैव विविधता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। पर्यावरणीय संकट के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई। बढ़ती आबादी और शहरीकरण के चलते बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है जिससे अनेक वनस्पति प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन। वैश्विक तापमान में वृद्धि और नियमित वर्षा और सूखा जैसी परिस्थितियां अनेक पौधों के लिए प्रतिकूल साबित हो रही हैं। प्रदूषण। जलवायु और मृदा प्रदूषण सीधे पौधों की वृद्धि और प्रजनन को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय असंतुलन। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है जिससे वनस्पति विविधता घट रही है। अनावश्यक शोषण। औषधि और दुर्लभ पौधों का अत्यधिक दोहन भी उनके अस्तित्व को खतरे में डालता है। वनस्पति जैव विविधता का प्रभाव। कई पारंपरिक औषधि पौधे विलुप्ति के कगार पर हैं। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में बाधा उत्पन्न हो रही है। मृदा की गुणवत्ता और जल चक्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पशु पक्षियों के आवास समाप्त होने से जैव विविधता की पूरी श्रृंखला पर खतरा मंडरा रहा है। पारंपरिक कृषि पद्धतियों और आदिवासी जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ा है। संरक्षण के उपाय। वनस्पति संरक्षण क्षेत्र की स्थापना। स्थानीय व पारंपरिक पौधों के संरक्षण को बढ़ावा। जैविक खेती और रसायन मुक्त कृषि प्रणाली को अपनाना। जन जागरूकता अभियानों द्वारा लोगों को संरक्षण के प्रति प्रेरित करना। शोध व वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से विलुप्त हो रही प्रजातियों को संरक्षित करना। पर्यावरणीय संकटों का सीधा प्रभाव वनस्पति जैव विविधता पर पड़ रहा है जो एक गहरी चिंता का विषय है। यदि हमने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो न केवल अनेक पौधे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी बल्कि पूरा पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अतः यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और वनस्पति विविधता को संरक्षित रखें ताकि पृथ्वी पर जीवन सतत बना रहे। विलुप्त होती वनस्पति प्रजातियां और संरक्षण के उपाय। वनस्पति जगत पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का मूल आधार है। यह न केवल जीवन को ऑक्सीजन, भोजन, औषधियां, आवास प्रदान करता है बल्कि जलवायु और मृदा को संतुलित बनाए रखने में भी सहायक है। किंतु वर्तमान समय में अनेक वनस्पति प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं या संकटग्रस्त स्थिति में हैं। यदि इनका समय रहते संरक्षण न किया गया तो इससे न केवल जैव विविधता में भारी कमी आएगी बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विलुप्ति के कारण में प्रमुख हैं वनों की कटाई। शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार के कारण जंगल तेजी से समाप्त हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास का नाश। सड़कों, बांधों और निर्माण कार्यों से पौधों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं।

0: प्रवाहित होती है। औषधि संसाधनों का ह्रास, आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां कमजोर पड़ती हैं। खाद्य सुरक्षा पर असर, कुछ पौधे जो खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं, उनके प्रभाव से पूरी श्रृंखला बाधित होती है। स्थानीय संस्कृति व ज्ञान की हानि, पारंपरिक वनस्पति ज्ञान भी विलुप्त होता जाता है। संरक्षण के उपाय, वनों की रक्षा, वनों की कटाई को रोककर प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखना, पौधों का इन सीटू एक्स सीटू संरक्षण, प्राकृतिक स्थल पर और प्रयोगशालाओं बोटनिकल गार्डन में प्रजातियों को संरक्षित करना, बीज बैंक और उत्तक संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियों के बीज और उत्तक संरक्षित कर भविष्य के लिए सहेजना, जन जागरूकता, लोगों को पौधों के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के प्रति शिक्षित करना, नियम व कानून, जैव विविधता अधिनियम और वन संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जनजाति व ग्रामीण समुदायों को संरक्षण में शामिल कर उनकी परंपरागत जानकारी का उपयोग, वनस्पति प्रजातियों की विलुप्त केवल जैविक हानि नहीं बल्कि यह हमारे जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इनका संरक्षण न केवल वैज्ञानिक या पर्यावरणविदों की जिम्मेदारी है बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। यदि हमने अभी प्रयास किए तो आने वाली पीढ़ियां भी इस हरियाली और जैव विविधता का लाभ उठा सकेंगी।
1: आप सुन रहे थे वार्ता पृथ्वी पर जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन। वार्ताकार थे बसंत कुमार मंडल। हम आपको बता दें श्रोताओं, इस वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

बढ़ते हैं श्रोताओं कार्यक्रम में आगे जीवन साथी फिल्म के गीत के साथ। किशोर कुमार को सुनेंगे हम इस गीत में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे थे जीवन साथी फिल्म में किशोर कुमार को, शब्द रचना मजरूर सुल्तानपुरी के थे और संगीत निर्देशन आरडी बर्मन का था। श्रोता साथी, गर्भावस्था का समय हर महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय में सही पोषण, स्वास्थ्य जांच और देखभाल बेहद जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कई आर्थिक सहायता योजनाएं शुरू की हैं। इनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे अपने स्वास्थ्य और पोषण का ध्यान रख सकें।

श्रोताओं, इस योजना का उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यदि आप आपके परिवार में या आसपास कोई गर्भवती महिला है तो उसे अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर अवश्य संपर्क स्थापित करें और संबंधित योजना, उसकी पात्रता और उस योजना से जुड़ने पर मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी लें और सही समय पर पंजीकरण करवाएं। सही समय पर पंजीकरण करवाकर हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो जरूरी है कि हम स्वयं जागरूक बने और औरों को भी जागरूक बनाएं, क्योंकि माँ का स्वस्थ होना स्वस्थ बच्चे का जन्म के लिए बेहद जरूरी है और स्वस्थ बच्चा जो देश का भविष्य है वो भी सुरक्षित और स्वस्थ होगा। श्रोताओं, इससे आवश्यकता है सिर्फ हमारे जागरूक होने की।

0: श्रोताओं, इसी तमाम जानकारियों के साथ कल कारखाने का आज का यह अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति, आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ पल में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
3: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और DGP से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
3: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
4: प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोदोलोदीस said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a four-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. The Election Commission today announced the schedule for the biennial election to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha bipoll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The bipoll will also be held on the 18th of next month. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela tomorrow morning through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas.

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आप सुन रहे हैं पंच परगणिया लोकगीत। कलाकार हैं कृष्णाचरण कोयरी और उनके साथी। लीजिए सुनिए उनकी अगली प्रस्तुति।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को जोहार।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से।

किसान भाइयों, आज 22 मई है। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है और वर्ष 2026 का थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य ये उजागर करना है कि स्थानीय स्तर पर किए गए छोटे छोटे प्रयास भी दुनिया भर में जैव विविधता के संरक्षण और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये स्थानीय समुदायों, शहरों और व्यक्तिगत स्तर की भागीदारी को वैश्विक लक्ष्यों से जोड़ने पर जोर देती है। ग्रामीण श्रोता मित्रों, जैव विविधता के जनक टेटन साइंस स्कूल्स के प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी लेखक और शिक्षक एडवर्ड ओ विल्सन थे। श्रोता मित्रों, जैव विविधता का सतत

19 से 30 अक्टूबर 2026 तक आर्मेनिया के येरेवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हमारे पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करने वाली गंभीर चुनौतियों के समाधान खोजना है। जैव विविधता सम्मेलन जैविक विविधता पर कार्रवाई के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करता है। श्रोता मित्रों, जैव विविधता के महत्व में मुख्यतः पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण और भंडारण, प्रदूषण से लड़ना, जलवायु को स्थिर करना, जल संसाधनों की रक्षा करना, मिट्टी का निर्माण और संरक्षण करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। ग्रामीण भाइयों, ब्राजील में दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं, जिनमें अटलांटिक वन, पेंटानल, काटिंगा सामुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, सेराडो और अमेजन वर्षावन, जिसका लगभग 60% हिस्सा शामिल है। इसलिए ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश कहा जाता है।

और अब कुछ बातें गर्मियों के सीजन में सब्जियों की तुड़ाई और रख रखाव की। किसान भाइयों, गर्मियों में सब्जियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सुबह या शाम के समय उनकी तुड़ाई करें। तुड़ाई के तुरंत बाद उन्हें छायादार जगह पर रखें और नमी बनाए रखने के लिए हल्की गीली कपड़े से उन्हें ढक दें। गर्मियों के मौसम में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सब्जियां बहुत जल्दी मुरझाकर खराब हो जाती है। अतः अच्छी उपज लंबे समय तक रख रखाव के लिए हमें हमेशा सही समय पर तुड़ाई करनी चाहिए। इस समय तापमान कम होता है और सब्जियों में प्राकृतिक नमी बनी रहती है। कभी भी चिलचिलाती धूप में सब्जियों की तुड़ाई ना करें, क्योंकि इससे सब्जियां जल्दी सिकुड़ जाती है और उनका वजन भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, गर्मियों में बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, खीरा, तोरई, करेला, ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं। अतः इन्हें सही आकार में जल्दी जल्दी तोड़ते रहें। हरी मिर्च, भिंडी, बीन्स, इनको हाथ से झटके से खींचने के बजाय कैंची या चाकू से काटें, ताकि पौधे को नुकसान न पहुंचे। किसान भाइयों, सब्जियों को तोड़ने के बाद तुरंत किसी छायादार या ठंडे स्थान पर रखें। पत्तीदार सब्जियां जैसे धनिया, पालक आदि पर पानी का हल्का छिड़काव करते रहें। उन्हें गीली सूती कपड़े में लपेट कर आप रखें। हरी पत्तेदार सब्जियों को अखबार या सूती कपड़े में लपेट कर फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में रखना आवश्यक होता है।

और अब आइए सुनते हैं एक भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं रामधनी शर्मा। लीजिए सुनिए उनसे ये भोजपुरी गीत।

रामधनी शर्मा से आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है मशरूम उत्पादन की उन्नत तकनीक और लाभ। इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल। आइए इनसे बातें करते हैं।

0: किसान भाइयों, आज हमारे बीच हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दारीशाही के कनीय वैज्ञानिक सह प्राध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार वर्णवाल जी, जो हमें मशरूम की उत्पादन और उनके उन्नत तकनीक के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का अपने स्टूडियो में स्वागत करेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: वर्णवाल साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मशरूम के कौन कौन से नाम हैं और इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप से इसका परिचय दे दें।
1: सही अर्थ पूछा जाए तो मशरूम को विभिन्न नामों से जाना जाता है
0: जी।
1: इसको छतरक या खुम्बी या गोबर छत्ता या खुकड़ी इत्यादि नाम से हम लोग पुकारते हैं
0: जी।
1: पोषकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मांस तथा सब्जी के बीच में आता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसे वेजिटेरियन मीट भी कहते हैं।
0: वाह।
1: मशरूम प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वास्तव में इसमें 5% प्रोटीन की मात्रा होती है, जबकि गाय के दूध में 3.5% तथा गोभी या हरा सेम में 2.4% से अधिक प्रोटीन नहीं होते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वास्तव में वेजिटेरियन मीट के रूप में काम करता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन तथा विटामिन B1, B2 तथा विटामिन सी इत्यादि पाए जाते हैं।
0: वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, झारखंड में मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में क्या बता सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ की जलवायु थोड़ी भिन्न है।
1: बिल्कुल सही बोले आपने। सही बात पूछा जाए तो झारखंड में साधारणतः दो प्रकार के खाने योग्य मशरूम होते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: जिसको हम लोग रुगड़ा या खुकड़ी के नाम से जानते हैं।
0: बिल्कुल।
1: मई से अगस्त महीने में साधारणतः जब वर्षा होती है उसमें रुगड़ा या साल पेड़ के नीचे या बड़े बड़े पेड़ के नीचे पाए जाते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: जबकि खुकड़ी जो है वो पथरीले जमीन पर,
0: अच्छा,
1: या कह सकते हैं कि जहाँ गोबर का भंडार है, टाल लगाया हुआ है, उस जगह भी ऐसा देखने को मिलता है,
0: आसानी से निकल जाता है,
1: आसानी से मिलता है,
0: इसीलिए इसे गोबर छत्ता भी
1: कहते हैं
0: जी जी।
1: तथा एक चीज ये भी होता है कि कई के हमारे किसान भाई वहां से चुन कर ले आते हैं, खा जाते हैं, जो कुछ कुछ जो पॉइजनस भी होते हैं, कह सकते हैं कि जहरीला होते हैं, परंतु यदि जो किसान अच्छे से पहचानते हैं तो उसको खाया जा सकता है। लेकिन जो मशरूम उत्पादन हम लोग करते हैं, जो वास्तव में जिसकी खेती की जाती है, जिसकी हम जानकारी दे रहे हैं, वह निश्चित रूप से खाने योग्य होता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और प्रयोग से ऐसा पाया गया है ऑयस्टर मशरूम,
0: अच्छा,
1: खास करके झारखंड के जो विभिन्न पड़ोसी राज्य हैं जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन सभी राज्यों में ऑयस्टर मशरूम आसानी से ग्रो किया जा सकता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑयस्टर मशरूम खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फायदा दिखाई पड़ेगा। और जहां तक अभी आपने इसकी तकनीक के बारे में बताया, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामग्री सबसे पहले जरूरत है।
0: जैसे
1: महत्वपूर्ण सामग्री में जैसे ताजा पुआल चाहिए, पुआल को 1 से 1.5 इंच का काट लेना चाहिए,
0: ठीक है,
1: या गेहूं का भूसा
0: मैंने कुट्टी बना ले,
1: कुट्टी बना ले छोटा छोटा
0: जी जी।
1: दूसरा हम लोग मशरूम का स्पान बोलते हैं, जो बीज बोलते हैं, इसका बीज जो होता है उसको स्पान भी कहते हैं
0: जी,
1: इसके साइंस की भाषा में। तीसरा इसमें एक दवा लगता है बेविस्टिन।
0: अच्छा अच्छा।
1: चौथा फॉर्मलिन, ये भी एक दवा है।
0: क्या इसे बीज उपचारित करते हैं?
1: बीज को उपचारित नहीं, इसको पहले पुआल से को हम लोग स्टरलाइज करते हैं उसे।
0: बिल्कुल।
1: और पांचवा है पॉलिथीन का थैला
0: जी,
1: जो बड़े आकार का जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा
0: जी,
1: या 45 सेंटीमीटर लंबा 30 सेंटीमीटर चौड़ा, या 60 सेंटीमीटर लंबा 45 सेंटीमीटर चौड़ा
0: जी।
1: तो ये बड़े आकार का पॉलिथीन का थैला लेना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही साथ कुछ अरहर के पीसे हुए दाल,
0: अच्छा,
1: या चना के पीसे हुए दाल, या ताजा सत्तू,
0: ठीक,
1: इन 6 सामानों का खास करके मशरूम की खेती करने से पहले इस जुगाड़ हो जाना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा।
1: इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग मशरूम की खेती करने की तैयारी कर सकते हैं
0: जी।
1: इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 100 लीटर पानी में 10 ग्राम बेबिस्टिन, 200 मिलीलीटर फॉर्मुलिन तथा 12 किलोग्राम कुट्टी, जो कटा हुआ 1 से 1.5 इंच का पुआल कुट्टी
0: जी,
1: उसको हम लोग क्या करते हैं 100 लीटर पानी के घोल में डुबो देते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: डुबोने से पहले हम लोग बेबिस्टिन और जो फॉर्मुलिन दवा है उसको हम लोग डाल देते हैं और अच्छी तरह से घोल देते हैं।
0: अच्छा, इसको पानी में कितने देर तक डुबा कर रखना चाहिए?
1: पानी में इसमें 8 से 10 घंटा कह सकते हैं, ओवर नाइट, जो रात भर होता है,
0: रात
1: भर हम लोग पानी में 8 से 10 घंटा डुबा कर छोड़ देते हैं। फिर सुबह में इसको हम लोग सफेद साफ सुथरा पक्के पर धीरे से निकाल देते हैं, या कह सकते हैं कि पॉलिथीन का सीट चादर बिछा करके उस पर इस पर फैला देते हैं। फैलाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो अनावश्यक पानी है उसमें बाहर चला जाए, और ये सुखाने का कार्यक्रम तब तक करेंगे जब तक उसमें 60-70% नमी न हो जाए
0: जी।
1: किसान भाई नमी के जानकारी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा नहीं होता है जो हम जिसे पता कर सके कि 60-70% नमी कैसे हो पाएगा। इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हाथ से आपका पकड़ करके पुआल को उठा ले और हाथ से दबाए, दबाने के फलस्वरूप यदि पानी गिरता है तो कहेंगे अभी और सूखने की अवस्था है।
0: अच्छा।
1: और यदि दबाने के बाद यदि हाथ में पानी नहीं चढ़ता है इसका मतलब है कि 60-70% नमी हो गया है,
0: आवश्यकता अनुसार वो तैयार
1: है। अब उसमें आप जब 60-70% नमी हो रहता है तो उसके बाद हम लोग क्या है सत्तू या बेसन लगभग 200 ग्राम ताजा जो होगा उसमें हम लोग 12 किलो पुआल में जो भिंगाए थे उसमें लगभग 200 ग्राम सत्तू या बेसन को मिला देते हैं।
0: ठीक है।
1: अब मिलाने के पश्चात इसको हम लोग पॉलिथीन में पैक करते हैं। एक चीज और ध्यान रहे किसान बंधु कि पॉलिथीन बैग में डालने से पहले ये जो पुआल आपने पुआल दवा प्लस मशरूम का स्पान जो आप डाले हैं डालने से पॉलिथीन में छोटा छोटा छेद करना चाहिए।
0: ठीक।
1: छेद करने का उद्देश्य ये होता है कि जो हम लोग स्पान डाले हैं वो भी जीवित पदार्थ है, उसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए पॉलिथीन को चारों तरफ से छोटा छोटा छेद 8-10 तो पॉलिथीन में छेद कर देना चाहिए। छेद करने के पश्चात ही उसको हम लोग जो स्पान प्लस पुआल प्लस दवा जो मिलाए थे सब उसको लेकर के हम लोग पैक करते हैं। पैक करने के पश्चात 10-12 दिन 10-12 दिन के बाद में हम लोग पॉलिथीन काटते हैं।
0: अच्छा।
1: तो पॉलिथीन काटने का जो कार्यक्रम है एक चीज ध्यान रहे।

0: लेते समय में कुछ सावधानी है जो हमारे किसान भाई अवश्य ध्यान देंगे, क्योंकि सैया को नम बनाए रखना करने का अर्थ है जब आप गट्ठर जो खोलते हैं उसी को हम लोग सैया भी बोलते हैं, जब प्लास्टिक काटने के बाद में वो गट्ठर जो बन जाता है उसको सैया बोलते हैं। सैया को नम बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, खास करके ग्रीष्म ऋतु में। हम अभी भी दो पहले बोल चुके हैं कम से कम दो बार पानी पटाना चाहिए, शीत में शीतकाल शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में कम से कम एक बार पानी पटाना चाहिए, हल्की हल्की सिंचाई देंगे। दूसरा, सैया के ऊपर यदि धान या अन्य किसी बीज का अंकुरित हो जाए तुरंत उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: दूसरी बात। तीसरी बात,
1: दूसरा कोई पौधा नहीं होगा,
0: दूसरा कोई पौधा उगे नहीं, नहीं तो उगने से उसको होता बाधा होगा जिसके कारण उपज कम आएगा,
1: कम होगा।
0: तो तीसरा है, पुआल साफ सुथरा होना चाहिए,
1: ठीक,
0: अधिक से अधिक एक साल पुराना हो। ज्यादा पुराना पुआल रहने पर ऐसा देखा गया है कि अच्छा उपज नहीं मिलता है, साफ सुथरा पुआल चाहिए और एक साल पुराना से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा है, जिस कमरे में मशरूम की खेती कर रहे हैं उस कमरे का तापक्रम 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखना चाहिए।
1: जी जी,
0: टेम्परेचर अगर सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन में कमी आएगी। किसान भाई, एक्चुअल में मशरूम में बहुत सारे फायदे हैं।
1: जी,
0: सबसे पहला फायदा यह है कि जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए एक दवा का काम करता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ही नहीं होता है,
1: कोलेस्ट्रॉल
0: फ्री होता है, जिसके कारण से वो वास्तव में एक दवा का काम करता है। और दूसरा है ब्लड प्रेशर।
1: अच्छा,
0: ये ऐसा देखा जाता है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो अगर मशरूम का लगातार सेवन 3 महीने तक करे निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर कुछ नॉर्मल होने लगता है।
1: जी।
0: साथ ही साथ जो एनीमिया पेशेंट है, खास करके झारखंड में हमारे जितने भी औरत लोग हैं या कह सकते हैं कि महिला लोग हैं, उनमें आयरन की कमी होती है जिससे एनीमिया नामक बीमारी होता है। ये इसमें आयरन का मात्रा बहुत अच्छा होता है, तो ये कह सकते हैं कि एनीमिया यदि पेशेंट है तो आप निश्चित रूप से मशरूम की अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ले। साथ साथ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज जो होता है वो जनरली देखा जाता है खास करके कि उसको कार्बोहाइड्रेट लेना डॉक्टर मना
1: कर देते हैं,
0: लेकिन ये देखा ऐसा प्रयोग से पाया गया है यदि इसका बराबर डायबिटिक पेशेंट मशरूम को अगर खाना के रूप में लेते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनका शुगर लेवल डाउन होगा और इस तरह से ये एक दवा का भी काम करता है,
1: वो स्वस्थ भी रहेंगे,
0: स्वस्थ भी रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, आपको इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद। किसान बंधु, जोहार।

और अब कुछ बातें निम्बू वर्गीय पौधों की देखभाल की। किसान भाइयों, मई जून के महीने में निम्बू वर्गीय पौधों को तेज धूप, गर्म हवाओं और पानी की कमी से बचाना सबसे जरूरी है। अच्छे फल और विकास के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें और जैविक खाद का प्रयोग करें। गर्मियों के कारण पौधों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। गमले वाले पौधों में जरूरत के अनुसार रोजाना या एक दिन छोड़कर पानी दें। मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गमले में रुके नहीं। यदि पौधे में फूल आ रहे हैं तो ज्यादा पानी दें, अन्यथा फूल झड़ने लगते हैं। फल मटर के दाने जितने बड़े हो जाएं, तब पानी की मात्रा बढ़ा दें। सिंचाई का पानी सीधे मुख्य तने के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तने के चारों ओर छोटी मेड़ यानी थाला बना दें। हर महीने पौधों की गोड़ाई करके उसमें अच्छी तरह गोबर की सड़ी खाद, बर्मी कंपोस्ट या नीम की खल्ली डालें। यदि पौधा ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइजर पानी में भिंगोकर देना फायदेमंद होता है।

किसान भाइयों, अब चलते चलते कुछ बातें गर्मियों में पशुधन के रख रखाव की। किसान भाइयों, गर्मियों में पशुधन को हीट स्ट्रेस से बचाने और उसका दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए हवादार और छायादार वाड़े की व्यवस्था करें। उन्हें दिन में 3 से 4 बार ठंडा और ताजा पानी पिलाएं, संतुलित आहार दें और नियमित रूप से नहलाएं। गर्मी के मौसम में गाय, भैंस और अन्य पशुओं की उचित देखभाल करें। उनके पशुशाला हवादार होने चाहिए ताकि अंदर की गर्म हवा निकल सके। शेड की छत को गर्म होने से बचाने के लिए उस पर पुआल, घास या खस डाल दें, साथ ही समय समय पर पानी छिड़कें।

संभव हो तो पशुओं के लिए कूलर या पंखों की भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। दोपहर के समय बाड़े के दरवाजों और खिड़कियों को गीले बोरे से ढक दें। पशुओं को दिन में कम से कम 3 बार जरूर पानी पिलाएं। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का ख्याल रखकर आप अपने दुधारू पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं, उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं और उनका उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 मई से 2 सप्ताह तक अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं।
5: वर्तमान 2024 का मतदाता सूची में किन किन मतदाता का नाम है उनका SAR तथा 2003 का मतदाता सूची का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है SAR प्रोसेस में।

0: भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में देने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतदाता का मैपिंग हो गया। सभी अनमैप्ड मतदाता का सूची 23 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप होगा तो तुरंत आपका BLO से संपर्क करते हुए उनका नाम का मैप करेंगे सुनिश्चित करें।
1: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि झारखंड का समावेशी विकास मॉडल अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अगले चरणों में राज्य के हजारों अति गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका है। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में शोध, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
2: राजकीय विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में। राज्य सरकार की वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए हैं, उन सब के बारे में बताना है सभी बच्चों को, इसका लाभ मिल सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हो सके, वो कम्पीट कर सके देश के अन्य अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कंपेरिजन में।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है तथा सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इधर हजारीबाग में 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से नाराज हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम DM साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठे मिलेंगे, उनको ये भी बोल के आया।
1: जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्वत भारत की पहली आधारभूत संरचना है और इनके बिना नदियों तथा पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं है।
4: आज का दिन जैव विविधता दिवस है। पहाड़ और नदियाँ दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियाँ करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। और आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, पहाड़ों के सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, तो ये सम्मेलन आज उसी कानून बनाने के प्रारूप पर विचार करेगा।
1: हीट वेव को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के मामले कम हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह तैयार है।
5: कल थोड़ा टेम्परेचर निश्चित रूप से ज्यादा था, अभी जो देख रहे हैं उसमें हीट स्ट्रोक वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात है उससे संबंधित जो भी जिस चीज की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई, इसलिए मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
1: और अब मौसम का हाल। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से तीन घंटों के भीतर इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची के धुरवा स्थित बंगिया सांस्कृतिक परिषद विद्यालय में 15 दिवसीय रांची जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में मलखंब, योग, खो खो, कबड्डी, आत्यापात्य और बैडमिंटन के बेसिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जापान में होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने इसे राज्य की हॉकी परंपरा और सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुद्रांश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: देवघर में बच्चों को खेल की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम निर्माण की ओर गति बढ़ गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार से जमीन उपलब्ध करने और सहयोग करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संसाधन उपलब्ध कराए तो देवघर में आधुनिक स्टेडियम का काम शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अपने मद का पूरा राशि देने की बात कही है।
2: 500 करोड़ का जो है बड़ा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाऊंगा जिसमें फुटबॉल खेलेंगे, उसी में सांसद जी का पूरा उपयोग आप ही के विधानसभा में करूँगा।
1: वहीं दूसरी तरफ देवघर में गर्मी में पेयजल और बिजली की किल्लत न हो इसके लिए नगर निगम बहुत तेजी से काम कर रहा है। मेयर रवि महतो ने कहा कि पंप हाउस की मरम्मत और पुनासी डैम से जलाशय की व्यवस्था देवघर में की जा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
3: पानी की समस्या तभी दूर हो सकता है जब पुनासी जलाशय पूर्ण तरह से जो है चालू होगा। उसी कार्य जो धीमी थी उसको कार्य को हम तेजी में कर दिए हैं। एनओसी का कुछ प्रॉब्लम था, एक मिल चुका है, एनओसी नहीं मिला।

0: उसको लेकर के भी हम लगे हुए हैं। और फिलहाल अभी जो सप्लाई पानी चल रहा है हमारे नदी से, उसमें हम समय समय पर पानी पुनासी से छोड़वा करके नदी में पानी ला करके शहर में जलापूर्ति कर रहे हैं। और बिजली को लेकर के मेगा पावर जो कम मिल रही थी उसमें भी हम लोग जीएम से पीएमडी से बात करके उसको भी अभी फिलहाल वर्तमान में हम पहले से ठीक कर दिए हैं। बिजली बिल का काफी गड़बड़ी का शिकायतें आ रही थी, तो केंद्र के माध्यम से उसका भी समाधान हमने किया और कर भी रहे हैं। हमारे पास संसाधन की थोड़ी कमी है नगर निगम में, उस जितनी संसाधन है उसमें हम लोग लगे हुए हैं कि हमारे शहर कैसे साफ सफाई रहे। हमारा धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सभी जगह से हमारे यहाँ पूजा करने के लिए व्यक्ति आते हैं, उनको स्वच्छ वातावरण में बाबा का दर्शन करें।
1: वहीं देवघर को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। एनएचआई के महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि देवघर बासुकीनाथ और गिरिडीह के मधुबन सहित कई धार्मिक स्थलों को एक सर्किट के रूप से जोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सड़कों की चौड़ीकरण सहित कई तरह के कनेक्टिविटी पर विशेष काम किए जा रहे हैं।
2: अभी इंडिया में हम लोग रिलीजन सर्किट बना रहे हैं, ये वो रूट्स होंगे जिसपे कि जो पवित्र धाम है हमारे, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं या बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं या जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन सब का जो पवित्र तीर्थ स्थान है उस सब को भी कनेक्ट करने की बात चल रही है, जिसके लिए हमारा एनएचआई भी उसमें सहयोग दे रहा है। जैसे देवघर बासुकीनाथ है, ये बाबा धाम और बाबा बासुकीनाथ इन दोनों जगहों को जोड़ता है। इसके अलावा बिहार में भी बौद्ध सर्किट बन रहा है, जिससे राजगीर और सारनाथ वगैरह सब जुड़ रहे हैं। इसी तरह से पारसनाथ को भी जोड़ने का भविष्य में योजना बनाई जा रही है। अभी बासुकीनाथ धाम में कांवड़िया पथ अलग से बना रहे हैं, जो 3.5 मीटर चौड़ी है और बासुकीनाथ देवघर से सटाकर बनाया जा रहा है।
1: भीषण गर्मी के बावजूद देवघरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जारी है। प्रशासन ने मैना धाम, बासुकीनाथ, नंदन पहाड़ और नौलखा मंदिर में पेयजल शेड और मेडिकल कैंप की व्यवस्था कर दी है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। संथाल में इन दिनों गर्मी की छुट्टी के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उन्हें बेहतर सुविधा मिले इस ओर जिला प्रशासन लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
3: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: बंगला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन शुक्रवार है और शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं साप्ताहिक परिवार कल्याण पत्रिका कार्यक्रम कल्याणी।
1: स्वास्थ्य परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार जोहार। श्रोताओं, मई का ये महीना गर्मी के चरमोत्कर्ष पर है, पर श्रोताओं अगर मौसम गर्मी का है तो हमें भी कुछ अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होगी ताकि हमारी सेहत पर कोई आंच ना आए। इस मौसम में खूब सारे ठंडे तरल पदार्थ, फलों का रस और जल पीकर हम अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम प्यास लगने का इंतजार ना करें बल्कि समय समय पर जल का सेवन करते रहें। दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक चूंकि धूप बहुत तीखी रहती है तो इस समय कोशिश करें कि घर पर रहें। अगर कोई महत्वपूर्ण काम ना हो तो बाहर ना निकलें। इस मौसम में ढीले कपड़े पहनना सुविधाजनक लगता है और जब भी घर से बाहर निकलें तो छाता जरूर लेकर निकलें और साथ ही टोपी पहन लें। धूप के लगने से कभी कभी आंखों में भी जलन होती है तो इस मौसम में धूप का चश्मा भी जरूर पहने। कपड़े सूती के हों, हवादार हों। जब भी सुबह शाम व्यायाम करें तो उस समय भी अपने आसपास का वातावरण ठंडा रखें। इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी काफी होता है तो इसके लिए मच्छर भगाने वाले किट या स्प्रे का प्रयोग करें। हमेशा ठंडे जल से स्नान करें। कभी कभी अपने चेहरे पर या अपने शरीर की त्वचा पर एलोवेरा जेल या चंदन का लेप लगाएं, इससे त्वचा में थोड़ी ठंडक पहुंचेगी। इस मौसम में विटामिन सी का प्रयोग करें क्योंकि इससे हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है। सच पूछिए श्रोताओं तो गर्मियों के मौसम में सबसे सेहतमंद पेय है जल, पर इस जल का स्वाद बढ़ाने के लिए कभी कभी आप नींबू, जामुन या खरबूज या खीरा या पुदीने का टुकड़ा भी जल में डाल सकते हैं। हमेशा भोजन में सलाद का प्रयोग करें। गर्मियों में हल्का सुपाच्य और जल से भरपूर भोजन करना अच्छा रहता है। मौसमी फल, हरी सब्जियां, दही, छाछ और प्राकृतिक पेय पदार्थ तो इस मौसम में वरदान की तरह है। इन सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो गर्मियों का मौसम हंसते मुस्कुराते बीत जाएगा। बहनों, कार्यक्रम कल्याणी के अगले चरण में हम बात करेंगे गर्भावस्था की, जो कि एक महिला के लिए बड़ा ही खूबसूरत पल होता है, पर जरूरी है कि हम इस समय भी अपने सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखें। और एक आम समस्या जो गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है वह है UTI यानी मूत्र मार्ग का संक्रमण। इसके लक्षण में पेशाब करते समय दर्द, पेशाब का धुंधला होना और बार बार पेशाब

0: पेट के निचले हिस्से में दर्द या बेचैनी होती है। पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है पर मूत्र थोड़ा निकलता है। इसका निदान यह है कि हम मूत्र के नमूने की जांच प्रयोगशाला में कराएं, साथ ही हम खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, खासकर पानी का। पानी पीने से पेशाब पतला हो जाता है और पेशाब की बढ़ती आवृत्ति के कारण बीमारी शुरू होने से पहले मूत्र प्रणाली से कीटाणुओं को हटाया जा सकता है। क्रैनबेरी का जूस पीना भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह बैक्टीरिया को मूत्र पथ की परत से चिपकने से रोकता है। गुप्तांगों की सफाई करते समय भी अगर हम ध्यान दें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। साथ ही हम टाइट फिटिंग पैंट या अंडरवियर ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो आरामदायक हो, हवादार हो और खासकर सूती हो। गर्भावस्था के दौरान विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ लें, पत्तेदार हरी सब्जियों और फलों को अपने भोजन में शामिल करें, इससे भी हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। मूत्र मार्ग का संक्रमण आम बात है पर अगर यह समस्या बढ़ जाए तो जरूर डॉक्टर से मिले, अन्यथा इन सारे सलाह पर अगर अमल करेंगे तो यह संक्रमण कम होगा। प्रसव पश्चात स्वास्थ्य की देखभाल, आइए सुनते हैं इस विषय पर भेंट वार्ता डॉक्टर निमन राशि टोप्पो से। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, प्रसव के बाद स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह करनी चाहिए, आज के अंक में हम बातें करेंगे इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निमन राशि टोप्पो। डॉक्टर साहिबा, प्रसव के बाद महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है?
2: सर्वप्रथम तो हमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए। संस्थागत प्रसव मतलब कि हमें अस्पताल में प्रसव कराना चाहिए ताकि वहाँ पे सुरक्षित रूप से प्रसव हो सके। और उसके बाद हमें वहाँ प्रसव के बाद ये ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेज होती हैं। क्योंकि गर्भधारण के बाद एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सर्वप्रथम तो हमारा जो है कि गर्भाशय जो है वो छोटा होता है। उस समय हमें काफी सारे रक्तस्राव होते हैं और साथ ही साथ जो पीड़ा होती है वह तो बच्चे के आने की खुशी में तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हमें वो जो रक्तस्राव हो रहा है वह कहीं किसी भी तरह से दुर्गंध तो नहीं है।
1: अच्छा,
2: तो ये ध्यान रखना है हमें।
1: ये सब लक्षण अगर दुर्गंध आ रहा है तो कुछ उसमें कुछ खराबी हो सकती है,
2: या फिर उसका तापमान बढ़ा हुआ है।
1: अच्छा,
2: या फिर उसे किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है तो तुरंत जो देखरेख कर रहे हैं उनको तुरंत खबर करें ताकि सही समय पे उसको उपचार मिल सके। और साथ ही साथ महिलाओं को प्रसव पश्चात जितनी जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाना है, उसे कोई अन्य चीज जैसे मधु या कुछ और चीज देते हैं वो चीज ना देवे, ताकि बच्चा जो माँ का पहला गाढ़ा दूध, पीला गाढ़ा दूध होता है उसको वो प्राप्त कर सके और उससे वह अपनी इस दुनिया में जो कदम उसने रखा है वो तरह तरह के विटामिन प्रोटीन से वो लाभान्वित होने पाए।
1: किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर किसी का सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव हुआ हो तो?
2: सिजेरियन प्रसव में महिला को एनेस्थेटाइज किया जाता है तो उस वक्त वो उस अवस्था में नहीं रहती है कि वो अपना और अपने बच्चे का देखभाल कर सके। एक महिला जो बिस्तर पर एनेस्थेटाइज अवस्था में है तो उसको उस समय पूरी तरह से केयर किया जाता है जब तक वह पूरी तरह से ठीक ना हो।
1: अच्छा।
2: और उसके बाद जैसे वो ठीक होती है बच्चे को भी दूध पिलाना शुरुआत कर दिया जाता है उसका, और साथ ही साथ उसे कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप चलना फिरना शुरू करें ताकि उसको पूरी तरह से आहार की शुरुआत हो सके। शुरुआत में लोग गीला खाना देते हैं ताकि वो जो सुपाच्य भोजन है वो दिया आसानी से पच सके, वैसे भोजन दिया जाता है ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों तरह की चीजें उनको दी जानी चाहिए, साथ ही साथ लौह युक्त पदार्थ ये भी मिलनी चाहिए। घर जाने के पश्चात वो हल्के फुल्के काम कर सकती है, कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें उसको पेट पर दबाव पड़े।
1: अच्छा।
2: और साथ ही साथ उन महिला को भी ये सलाह दी जाती है कि वो खान पान में पूरा ध्यान रखे ताकि उसका घाव जो है जल्द से जल्द ठीक हो सके। हमें दो बच्चों के बीच में अंतर रखना है और हम बराबर ये देखा जाता है कि तुरंत ही गर्भ धारण करने की समय हो जाता है जिससे

0: महिला जो है कि असमय ही गर्भ धारण कर लेती है और वह जल जो अपना स्वास्थ्य का देखभाल और बच्चों को की देखभाल सही से नहीं कर पाती है। सबसे सरल उपाय है आजकल हम लोग PPIUCD माने जैसे ही प्रसव होता है उसके 48 घंटे के अंदर ही हम लोग IUCD लगाते हैं। अच्छा। ये सबसे अच्छा और कारगर अभी सिद्ध हो गया है जिससे कि हर महिला जो है अपने दो बच्चों के बीच में अंतर रख सकती है।
1: डॉक्टर साहिबा, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है हमारी महिला श्रोता आपके द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देगी और इसका लाभ जरूर उठाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, विषय प्रसव पश्चात स्वास्थ्य की देखभाल। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर निमन राशि टोप्पो और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म रात और दिन का ये गीत, और इसी के साथ कार्यक्रम कल्याणी से मुझे दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे और करेंगे सेहत संबंधी बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

साप्ताहिक परिवार कल्याण पत्रिका कार्यक्रम कल्याणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के साथ मैं मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

हमारी अधूरी कहानी। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, अरिजीत सिंह की आवाज थी, रश्मि विराग के बोल थे और संगीत था जीत गांगुली का।

मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और सैम भट्ट की आवाजों में आपने सुना फिल्म मर्डर टू का ये गीत। बोल लिखे थे सईद कादरी ने और संगीत मिठुन ने दी थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाकी नगमे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत।

अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना जीत फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे समीर ने और संगीत नदीम श्रवण ने बनाई थी।

0: जीना मरना तेरे संग। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें थी, समीर के बोल थे और संगीत था दिलीप सेन समीर सेन का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

रुंकिणी गुप्ता की आवाजों में आपने सुना फिल्म सुई धागा का ये गीत। बोल लिखे थे वरुण ग्रोवर ने और संगीत अनु मलिक ने बनाई थी। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में ही समाचार।

0: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर

0: सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब

0: तक शाम को हीट कम ना हो जाए, बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए, और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: There is also an appeal by Prime Minister on taking measures as we took during the COVID-19 pandemic.
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: Prabhu Dayal ji, why are we on a war footing right now?
3: Our Prime Minister urged citizens to restrain their consumption of petrol, diesel and gas. And this serves as a clear indicator of a high-stakes economic emergency triggered by external geopolitical shocks. So the Prime Minister's appeal to treat fuel conservation as a national duty in 2026 amid rising tensions in West Asia and a surging import bill signals that the situation has moved beyond routine budgetary challenges into a structural threat to India's economic stability. And the severity of the situation, as highlighted by the Prime Minister's remarks, can be understood through several key interlinked dimensions. You know, India imports vast majority of its oil and gas, making it vulnerable to volatile global prices. And the ongoing war in West Asia has pushed global energy prices to staggering levels, sharply reducing India's foreign exchange reserves. So therefore, by describing the situation as Sankat Ka Kaal, Prime Minister Modi is explicitly telling the nation that the luxury of high consumption is no longer sustainable.
1: Earlier today, Aditya Shukla, Akashwani correspondent, had a detailed discussion with energy expert Narendra Taneja on the energy situation in India.
4: We have Narendra Taneja, energy expert, with us now. So, Narendra ji, welcome to Akashwani News.
5: Thanks for having me.
4: To start with, I would like to first understand from you as an expert, how do you see our current energy needs? How much are we dependent on other countries for our fuels? Please give us a basic picture of the energy sector. How do you see the current energy sector?
5: Well, if you look at our country's energy landscape, you know, at present, we have a mixed picture in the sense that when it comes to renewable energy, in particularly solar and also wind to a very great extent, we have done exceedingly well. In fact, we have done better than most developed countries, you know, in the global north. The same more or less goes also for coal sector. In coal sector also, I think we have done very, very well, especially with new policy initiatives and the overall, you know, capacity that we have got now in terms of the production of coal is absolutely outstanding. However, when you look at hydrocarbons, mainly oil and gas, our dependence on imports is roughly in the region of 89%. You know, we import 89% of our total requirement of oil in the country. Of course, that includes crude oil that we import, refined also we export to almost like 106 countries around the world.

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना फिल्म वासना का ये गीत। बोल लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और धुन चित्रगुप्त ने बनाई थी।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना साथी फिल्म का ये गीत। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन बनाई थी नौशाद ने।

बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, शेवन रिजवी के बोल थे और संगीत था ओपी नैयर का। श्रोताओं, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना लव इन टोक्यो फिल्म का गीत। गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे और संगीत शंकर जयकिशन ने बनाई थी।

मुकेश और हेमलता की आवाजों में आपने सुना फिल्म विश्वास का ये गीत। गीत के बोल गुलशन बावरा ने लिखे थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म।

दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीत के बोल राजा मेहदी अली खान ने लिखे थे और संगीत था मदन मोहन का। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनसे राग अभोगी कानड़ा।

शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। अभी आपने सुना राग अभोगी कानड़ा। अब आइए सुनते हैं पूर्वी धुन।

0: शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सितार वादन। अभी आपने सुना पूर्वी धुन, और इस धुन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश